कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उन्हें बस महसूस किया जाता है। दो लोगों के बीच का विश्वास, अपनापन और एक दूसरे की खामोशी को समझ लेना ही रिश्ते की सबसे खूबसूरत पहचान है। वक्त और हालात चाहे कितने भी बदल जाए, सच्चा बंधन दिलों को हमेशा जोड़े रखता है।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत पल आता है जब सब कुछ नया नया और खुशनुमा लगने लगता है। जैसे नींद से जागती हुई बहार हमें याद दिलाती है कि हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है। इसलिए बीते हुए कल की उदासी को छोड़कर आज के खूबसूरत मौसम को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी में खुशियों को पहचानना भी एक हुनर है।

मान और अपनेपन से भरी छोटी छोटी जगहों में मिलता है। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा ठहरिए, प्रकृति को महसूस कीजिए और उन सरल खुशियों को अपनाइए जो मन को सच्चा सुकून देती है, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं महसूस करने में होती है।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, श्री रामचरित मानस गान आप सुनते हैं। 6:45 पर गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम होगा 7:10 पर। म्यूजिकल दिल लगे, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 8:45 और 9:10 पर। दिल का मेलबॉक्स, रिक्वेस्ट बेस्ड ये कार्यक्रम होगा 10:30 पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तस्वीर 11:10 पर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन सुनिएगा 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल आधारित होगा गीतकार जानिसार अख्तर पर 1:10 पर। संगीत.com म्यूजिक बेस्ड थीम यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:30 पर। मन भवन यह कार्यक्रम सुनिएगा 3:10 पर। 4:10 पर सुनिएगा फिल्म सॉन्ग्स।

गाते गुनगुनाते ये कार्यक्रम सुनिएगा 5:10 पर रेणुका आरएस के साथ। विश्लेषण ये कार्यक्रम सुनिएगा 6:10 पर अभिनीत शुक्ला के साथ। सांझ ढले कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:25 पर। मधुरिमा कार्यक्रम सुनिएगा 8:10 पर।

हर सिंगार कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 पर। गीत मेरे मनमीत ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:40 पर। यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बुधवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

जो व्यक्ति जितना कठिनाइयों से भागता है वो उतना ही अपने आप को निष्क्रिय बनाता है और जो उन्हें जितना आमंत्रित करता है वो अपने आप को उतना ही योग्य बनाता है। तो जिंदगी को वैसे ही जीते जाएं जैसे जैसे रूपों में वो आपके सामने आए।

नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और यदि आवश्यक हो तो माफी भी मांग लेना, ये गुण जिसके पास है वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 6:30 और 20 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करें कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।

ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसी विचार के साथ अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की अगली कड़ी।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है।

श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: सहायक प्राध्यापकानां उपसमाहर्तॄणां दन्तचिकित्सकानां सहायकाभियन्तॄणां व्यवहार न्यायाधीशानां अतिरिक्त लोकाभियोक्तॄणां अथ वनक्षेत्राधिकारिणां च नियुक्त्यर्थम् आयोजिताः परीक्षाः अन्याश्च परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अन्यासु प्रमुखासु निरस्तासु परीक्षासु प्रशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थासु व्याख्यातॄणां वरिष्ठ वैज्ञानिकाधिकारिणां सहायक वन संरक्षकाणां अथ अन्येषां प्रशासनिक प्राविधिक पदानां च नियुक्त्यर्थं परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिसूचनासु उक्तं यत् जेपीएससी जेएसएससी इत्येतयोः अनियमितता सम्बद्धानां प्रकरणानां शीघ्र विचारणाय उच्च न्यायालयं प्रति द्रुत न्यायालयस्य निर्माणाय अनुरोधः करिष्यते। तदतिरिक्तं जेपीएससी जेएसएससी इत्येतयोः आन्तरिक सतर्कता प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि करिष्यते। ब्रिक्स देशैः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासस्य क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। नवदिल्ल्यां ह्यः सम्पन्नस्य द्वादश ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त मन्त्रिस्तरीये वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30+ वर्षस्य कार्यविधिः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्र संघस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्व पूर्ण प्रभावी रूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसित देशेभ्यः वित्तीय सहायतायः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशील देशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभावीरूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै नवोन्मेषायै सहयोगायै सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थ व्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु केरल आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जाले पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्र परीक्षण प्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋण प्रदान क्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज़ जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has approved an incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG.

वक्त तो चला है 7:21 आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज साथ हूं मैं आपके बबीता।

मौसम की अगर बात करें तो कभी तेज धूप, कभी तेज बारिश, इन सब का ही सामना करना पड़ता है। ये पता ही नहीं चलता कि ये जो छतरी हम अपने साथ लाए हैं ये किस काम आएगी, धूप से बचने के लिए या बारिश से। फिलहाल आपको आज के तापमान कितना रहेगा इसके बारे में जानकारी दिए देते हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सूर्य उदय हो चुका है 5:52 पर और सूर्यास्त का वक्त होगा शाम 7 बजे।

0: जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ 19th ऑफ अगस्त। तो मुकेश, जैसा कि आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं दैट दिस इज आज सवेरे आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे टू आवर लिसनर्स। But before that, let's begin with the news first.
0: जी बिल्कुल जी। सरकार ने पाइप से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह योजना 1 सितंबर से 2

0: चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों तक पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। देश में इस समय 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है।
1: The United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system. The announcement comes after the UAE's air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. UAE Defense Ministry later said both missiles were assessed to have been targeting maritime navigation and fallen into the sea. UAE said it remains committed to dialogue, cooperation and regional integration as a means of promoting peace and stability. Iran has not yet commented on the UAE's allegations. However, Tehran has warned that the Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States.
0: झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा।
1: National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams.
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ACB ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं और आपराधिक षड्यंत्र मामले में की गई हैं। सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया था।
1: Moving on to the world of sports, in badminton, Indian shuttlers registered comprehensive wins at the BWF World Championships in New Delhi yesterday. Men's singles ace Lakshya Sen defeated Austria's Collins Filimon in the first round, while the Indian duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand continued their winning run to enter the pre-quarterfinals. We have a report.
2: Ace shuttler Lakshya Sen entered the second round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships. He defeated Collins Filimon of Austria in the opening round. The Indian shuttler was down after the first game at 16-21. However, Lakshya clawed back to register one-sided wins in the next two games, 21-8, 21-4. In the women's doubles, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the pre-quarterfinals after outshining United States' Lauren Lamb and Ellison Lee in straight games, 21-15, 21-12. Meanwhile, the Indian women's doubles pair of Kavi Priya Selvam and Simran Singhi bowed out of the World Championships after losing to Stefanie Stoyeva and Gabriela Stoyeva of Bulgaria, 21-7, 21-14. Earlier in the day, Unnati Huda advanced to the women's single second round after Myanmar's Thet Tar Thuzar in straight games, 22-20, 21-16. Meanwhile, the mixed doubles duo of Rohan Kapoor and Rutvika Shivani Kadde faced a defeat against the Canadian pair of Jonathan Lai and Crystal Lai in the mixed doubles first round. After winning the first game by 22-20, the Indian duo lost the next two games by 19-21 and 17-21. With Vishnu PS, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
0: और नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच महत्वपूर्ण है। भारत के 2 मैच में 3 अंक हैं। अगले दौर में पहुंचने के लिए भारत को आज का मैच ड्रॉ कराने की जरूरत है। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के 2 मैच में केवल 1 अंक है। इंग्लैंड पूल डी में दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में पहुंच

0: का है। और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो रेनु सबसे पहले आप बताएं चेन्नई में क्या खबरें हैं आपके पास।
1: मेरे पास दो खबरें हैं चेन्नई से मुकेश। द फर्स्ट वन, द तमिलनाडु ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मिनिस्टर डी शरद कुमार हैज सेड दैट मैरिड विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन स्टेट विल गेट अ फुल ईयर मैटरनिटी लीव फॉर द थर्ड चाइल्ड एज वेल। इन हिज रिप्लाई एट द स्टेट असेंबली ही स्टेटेड दैट फीमेल एम्प्लॉइज वर एलिजिबल फॉर फुल ईयर मैटरनिटी लीव फॉर देयर फर्स्ट and second child and 12 weeks leave for the third child. Now, the women get the same benefit for the third child also. He noted that the total fertility rate in the state is about 1.3 children per woman, which is well below the replacement level of 2.1. The fertility rate in the state was 3.9 in 1971, 2.7 in 1986, and 1.6 in 2017, and that is quite alarming, Mukesh.
0: बिल्कुल.
1: हमें इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है. And the second news is State Health Minister K.G. Arun Raj announced the Tamil Nadu Chief Minister's Elderly Health Insurance Scheme in the State Legislative Assembly. The program will provide a free cashless medical treatment to nearly 38 lakh residents aged 70 and above with a number of income ceilings for eligibility. He also said that the advanced treatment will be offered free of charge at government and empaneled private hospitals. Moving on to you, Mukesh.
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी मंत्री के किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसे रद्द कर सकते हैं। ये कानूनी शक्ति मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र सरकार के कार्य नियम 2026 की आधिकारिक अधिसूचना के बाद मिली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने मुंबई में कल ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में पुस्तकों, दुर्लभ दस्तावेजों, पुरातत्व कलाकृतियों, मानचित्रों और दुर्लभ सिक्कों के समृद्ध संग्रह का अवलोकन किया। श्री वर्मा ने कहा कि इस समृद्ध विरासत और संस्था के प्रति युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी को एक जीवंत और गतिशील संस्था बनाना चाहिए। और मुंबई में मीरा भयंदर को वसई विरार से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 13 और पुणे रिंग रोड को विस्तार की मंजूरी मिल गई है। मेट्रो लाइन 13 कॉरिडोर पर लगभग 17,725 करोड़ रुपए की लागत आएगी और पुणे रिंग रोड के पूर्वी विस्तार के लिए 10,502 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
1: Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar said the state has emerged as a global hub for research and innovation due to the skills of its youth. Speaking at World Youth Skills Day at Vidhan Sautha, he said, "Skill is an invaluable asset that cannot be stolen," and urged students to compete at the global level. He said the government is planning to launch Yuva Setu or Udyoga Setu to connect youth with private sector job opportunities. He also announced plans for an AI university and urged students to attend the Bengaluru Tech Summit in November this year. The Chief Minister stressed that skills along with education are essential for employment and encouraged youth to develop practical skills and pursue global opportunities. Now the news that I have from Bengaluru Metro, the Ubuntu Consortium will host the fifth edition of its Together We Grow program on the 2nd of next month at Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry in Bengaluru. This year's theme for the program is Business Beyond Borders. Ubuntu founder, president and former Karnataka Chief Secretary K. Ratna Prabha said the program will provide practical guidance on digital platforms, e-commerce, government e-marketplace, GEM and Open Network for Digital Commerce, ONDC. To help women-owned businesses reach national and global markets.
0: और अब कल करते हैं कोलकाता का रुख। पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग पर्यटन विभाग के साथ चाय की ब्रांडिंग करेगी। इसके लिए एक चाय महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने कोलकाता में बताया कि महोत्सव आगामी सर्दियों में दार्जिलिंग मॉल और सिलीगुड़ी में आयोजित होगा। श्री घोष ने कहा कि इस पहल से संबंधित सिलीगुड़ी की चाय नीलामी समिति के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त सिट्टोंग में भी एक संतरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
1: एंड News from Hyderabad Metro. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has promised strong action to protect

0: People's property rights. He recently held a review meeting on the registration of lands listed under the 22A prohibited list. If a person books an online slot to register land that falls under the 22A list, revenue officials must verify the land within 2 days. If it is confirmed to be private land, registration will be done immediately without delay. Aur ye sab kis liye ho raha hai Mukesh? Because section 22A is a list maintained under the Telangana Registration Act. It contains government lands, temple and endowment lands, waqf lands, assigned lands and other protected properties that are banned from private sale or registration to prevent illegal transactions.
1: और करते हैं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख. दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गणना पूरी हो चुकी है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए गए. इस महीने के 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी. दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन के आधिकारिक पत्र 26 अगस्त से जारी किए जाएंगे. नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 26 अगस्त को एक समारोह में इसकी शुरुआत होगी. इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद केवल 18 दिन में करीब 800,000 महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जबकि 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए जा चुके हैं. और नई दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 10 दिन का पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है. 20,000 से अधिक पुस्तकों के साथ ये पुस्तक मेला आगंतुकों को अपनी पसंदीदा किताबें देखने, चुनने और खरीद कर घर ले जाने का अवसर प्रदान कर रहा है. ये मेला 23 अगस्त तक सवेरे 9 बजे से रात 10 बजे तक सभी आगंतुकों के लिए खुला रहेगा. आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और रेणु कटारिया के साथ. आज सवेरे में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का. तो रेणु, सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं.
0: बिल्कुल.
1: तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम. दिल्ली में कल कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई है और आज आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है. आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. और मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: मुकेश, यू जस्ट mentioned that there was some spell of rain in Delhi yesterday, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई. सो लेट्स प्रे.
1: कुछ इलाकों में कहीं कहीं हुई है
0: जी. और सावन का महीना चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है
1: जी. चिंताजनक भी है.
0: सो लेट्स ऑल प्रे एंड होप दैट इट रेन्स वेरी सून अगेन. And moving on to Chennai, it is likely to rain or thundershowers are likely, particularly towards the evening or night. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy with light rain or drizzle possible sky. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. And Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 32 degrees Celsius.
1: और आज सवेरे में वक्त हुआ है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का आज के इतिहास के दिन क्या कुछ हुआ है. तो आज तारीख है 19 अगस्त और आज ही के दिन.
0: एंड टुडे अगस्त 19 मुकेश ब्रिंग्स अस टू इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस. सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट बोथ. एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. मानवतावादी होने का अर्थ शायद बस इतना है कि जब किसी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए तब उसके साथ खड़े होना चाहिए. हर वर्ष 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों तक भोजन, दवाइयां और आश्रय जैसी सहायता पहुंचाते हैं।
0: दो मुकेश, इट इज अ डे दैट वी से शुड बी यू नो मनाना चाहिए हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर डे के दिन ही या डेट के दिन ही, जैसे कि अगस्त
1: जी,
0: लेकिन ये जिस तरह हम आजादी को सिर्फ एक डेट से नहीं हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, हम अपनी आजादी हमें रोज मनानी चाहिए, उसी तरह आई थिंक द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे शुड नॉट जस्ट बी अ डे, इसे रोज हमें जीना चाहिए बिकॉज इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमंस। एंड दिस डेट आल्सो कैरीज अ वेरी पावरफुल मेमोरी। ऑन दिस डे इन 2003 अ बॉम्ब अटैक ऑन द यूएन हेडक्वार्टर्स एट द कनाल होटल इन बगदाद किल्ड 22 पीपल इंक्लूडिंग यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सर्जियो वियेरा डे मेलो। इन 2008 द यूएन जनरल असेंबली ऑफिशियली designated 19th August as World Humanitarian Day, first observed in 2009. The theme for this year's World Humanitarian Day is strengthening global solidarity and empowering local communities, continuing the ongoing global campaign call to hashtag Act for Humanity.
1: और वर्तमान में उनका काम पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवीय सहायता कर्मियों को अपने मिशन के दौरान लगातार हत्या, घायल होने, अपहरण, हिरासत और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विश्व मानवता दिवस पर आइए उन लोगों को याद करें जिन्होंने दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी, उन लोगों को सलाम करें जो आज भी अग्रिम मोर्चे पर सेवा में जुटे हुए हैं, और खुद को यह याद दिलाएं कि करुणा कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति है।
0: सो वेरी वेल सेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे व्हिच इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे टुडे।
1: बिल्कुल, एक तस्वीर को खींचने में भले ही एक पल लगता है लेकिन वो एक याद को पूरी जिंदगी के लिए संजोकर रख सकती है।
0: एंड दैट इज द मैजिक वी सेलिब्रेट टुडे मुकेश ऑन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। बट डिड यू नो फोटोग्राफी स्टोरी बिगैन नियरली 2 centuries अगो। फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ नीसे फ्रे नी एप्स क्रिएटेड व्हाट इज वाइडली कंसिडर्ड द अर्लीस्ट सर्वाइविंग कैमरा फोटोग्राफ अराउंड 1826-27। देन इन 1839 Louis Daguerre daguerreotype process was publicly announced in Paris on 19th of August, the date that inspired World Photography Day.
1: और पिछले समय की अगर हम याद करें तो एक समय ऐसा था कि जब तस्वीरें खींचने में घंटों लग जाते थे और आज स्मार्टफोन एक सेकंड के भी छोटे से समय में किसी पल को कैद कर लेते हैं। फोटोग्राफी ने एक लंबा और अद्भुत सफर तय किया है।
0: एंड द वर्ड इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। फोटोग्राफी लिटरली मींस ड्राइंग विद लाइट।
1: तो आज चाहे वो कोई मनमोहक सूर्यास्त हो, किसी की अनायास खिली मुस्कान हो या रोजमर्रा का कोई ऐसा पल जो अचानक खास लगने लगे, एक पल ठहरिए, अपने आसपास देखिए और उसे कैमरे में कैद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक तस्वीर वो कहानी कह देती है जिसे हजार शब्द भी बयां नहीं कर सकते। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी, फोटोग्राफ स्पीक्स 1000 words।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और आगे बढ़ते हैं। 1757 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ₹1 का सिक्का ढाला था।
0: In 1949 भुवनेश्वर बिकेम द कैपिटल ऑफ ओडिशा रिप्लेसिंग कटक।
1: अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन 1919 में की थी।
0: In 1960 on this day the Soviet Union launched Sputnik 5 or Kerbal Sputnik 2, the first spacecraft to send animals into orbit and return them safely to Earth. The capsule carried the dogs Belka and Strelka plus several other animals on this day. On the same day in the year 1964, SINCOM 3, the world's first geostationary communications satellite, was launched.
1: 1977 की बात करें तो आज ही के दिन सोवियत संघ ने सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया था।
0: And moving on to the year 2010, the last US combat brigade left Iraq, marking the end of major combat operations in Operation Iraqi Freedom.
1: और वान डेन हुगेन बैंड ओलंपिक खेलों के सबसे तेज तैराक बने थे 2004 में आज ही के दिन, जबकि 2007 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए मिशन एंडेवर के यात्रियों ने स्पेस वॉक आज ही के दिन पूरा किया था। और 2009 में आज ही के दिन नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी स्वदेश निर्मित नौसेना नौका महादेई से संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए थे
0: जी।
1: और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी की।

0: आज उनकी पुण्यतिथि है। खयाम बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया, मगर उनके गीत और धुने अमर हैं। उनके गीत रोजाना रेडियो और टेलीविजन पर किसी न किसी रूप में सुनाए दिखाए जाते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल तक काम किया और 35 फिल्मों में संगीत दिया। खयाम ने शर्मा जी नाम से कुछ फिल्मों में भी संगीत दिया है। तो खयाम की फिल्मों के कुछ गीत हम लोग निकाल के लाए हैं, तो क्यों ना वो सुने जाए।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

और अपने श्रोताओं को बता दें, खयाम के मामा जी को गीत संगीत से बेहद लगाव था। उन्होंने ही बंबई में खयाम को बाबा चिश्ती से मिलवाया, जो बी आर चोपड़ा की फिल्म ये है जिंदगी का संगीत तैयार कर रहे थे।

और बाबा ने उन्हें अपना सहयोगी तो बना लिया, मगर कहा कि पैसा टका कुछ नहीं मिलेगा। संगीतकार खयाम ने फिल्म रोमियो एंड जूलियट में एक्टिंग भी की थी, और एक बार फिल्म के सेट पर खयाम और चोपड़ा सही समय पर पहुंचते थे और बाकी लोग देरी से आते थे। महीने के आखिरी दिन सबको वेतन दिया गया, लेकिन केवल खयाम खाली हाथ रहे।

और अपने श्रोताओं को बताएं कि जब महीने का आखिरी दिन उनको खाली हाथ रहना पड़ा तो ये देखकर चोपड़ा ने बाबा से पूछा इन्हें पैसे क्यों नहीं दिए, तो जवाब मिला ट्रेनिंग पीरियड में ये मुफ्त में काम कर रहे हैं। तो चोपड़ा की बात रास नहीं है और उन्होंने फौरन अकाउंटेंट से 125 रुपये खयाम साहब को देने की बात कही।

पर अपनी हथेली पर इतने रुपए देखकर खयाम की आंखों में आंसू आ गए। चोपड़ा साहब की इस मेहरबानी को उन्होंने हमेशा याद रखा और बाबा चिश्ती के खयाम को सहायक तो बनाया मगर सिर्फ खाना खुराक और खुली का किराया अदा करते थे।

0: और खयाम को 1977 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला, जबकि 1982 में सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर का एक और पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला, और 2007 में संगीत नाटक अकादमी से उन्हें पुरस्कार मिला, जबकि 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: And today is the birthday of John Richard Deacon, who is an English retired musician, best known for being the bass guitarist for the rock band Queen. He composed several songs for the group, including top 10 hits You Are My Best Friend, Another One Bites the Dust, Back Chat, and I Want to Break Free, and was involved in the band's financial management also. But here, dear listeners, we are going to listen to Another One Bites the Dust by Queen.

0: और भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया है। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुत अच्छे बने उत्पल दत्त को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके अभिनय जो उन्होंने निभाया, भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी सभी को याद है। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियल से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया, तो क्यों ना उनका एक डायलॉग सुना जाए।
1: कितनी अफसोस की बात है कि ऐसे स्ट्रेट और ग्रेट सिंगर से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी भारी भरकम भाषा लिखने में प्रयोग करो, बोलने में नहीं, समझने में जरा तकलीफ होती है।
2: Today is the death anniversary of Anthony David Leighton Stock, who was an English film director, producer and screenwriter. And if we talk about directing films, his thriller films and action movies, the top one is Top Gun, Beverly Hills Cop The Second, Last Boy Scout, True Romance, Crimson Tide, Enemy of the State, Man on Fire, Deja Vu and Unstoppable. And Scott was the younger brother of film director Sir Ridley Scott. And here we're going to listen to a beautiful song, You Take My Breath Away, from the movie Top Gun.

और जाने से पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आज सवेरे 9:30 बजे से द आर्ट एंड एस्थेटिक फाउंडेशन की ओर से डांस कोरियोग्राफी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता फेस्टिवल ऑफ कोरियोग्राफी के दूसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा। और LTG ऑडिटोरियम में 6:00 बजे से कलाश्री की ओर से अमर शूरवीर की शौर्य गाथा पर नाटक का मंचन होगा। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 6:30 बजे से वैक्सीन उभरते वायरल प्रकोप पर चर्चा आयोजित होगी। और इंडिया हैबिटेट सेंटर में 7:00 बजे से सरगुन से निर्गुन कबीर इमोशंस पर नृत्य प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए। तो मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

0: मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र CGD कंपनियों को दर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय

0: ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में

0: ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: target of 372 runs. India were dismissed for 462 in the first innings, while Sri Lanka made 284 runs. The second and final test of the series will be played in Colombo from the 23rd of this month. In football, East Bengal FC will take on Sporting Club Delhi in the first semi-final of the 135th Durand Cup at the Salt Lake Stadium in Kolkata today. The match will begin at 7 p.m. IST, with both teams aiming to secure a place in the final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Abhishek. National Testing Agency refresh, four-tier paper check, 600 experts out, CISF security at offices informs the Indian Express. Nitin Naveen taps Tauri for UP, Punia for Punjab ahead of 2027 polls, reports the Pioneer. The Pioneer, in its editorial piece, The Courage That Refuses to Look Away, writes that World Humanitarian Day honors the selfless service of humanitarian workers, but they need protection and funding, not just applause. Trump cites CEC, India poll rules to push US voter ID bill, states Hindustan Times. Pakistan Supreme Court orders Imran Khan be moved to hospital, reports the Asian Age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes The Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिजाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज एफआईएच मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुताल्लिक

0: अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर एनटीए सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निज़ाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी एनटीए के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे, जहां सीआईएसएफ की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में एनटीए ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाब्तगियों की वजह से मंसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि मंसूख किए गए इम्तिहानात में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, जेएसएससी और एक एजेंसी टीडीपीएल समेत दीगर एजेंसियों के जरिए कराए गए इम्तिहान शामिल हैं। जो इम्तिहान मंसूख किए गए हैं उनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर्स, सिविल जज और फॉरेस्ट रेंज अफसरों की भर्ती के इम्तिहान शामिल हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के असिस्टेंट कंजर्वेटर्स और दीगर इंतजामी नीज तकनीकी ओहदों पर भर्ती के इम्तिहान भी मनसूख किए गए हैं। सरकार ने 6 इम्तिहान मुलतवी करने और 17 इम्तिहानात की सीआईडी तहकीकात का भी हुक्म दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक केसों के लिए हाईकोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की जाएगी। इन दोनों कमीशनों में दाखिली विजिलेंस शोबे भी बनाए जाएंगे, जबकि आला आईएएस अफसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी इम्तिहानात के निजाम में इस्लाहात की सिफारिश करेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली जल बोर्ड के साबिक सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी को साफ करने के प्लांट्स को जदीद तर्ज पर ढालने और उन्हें बेहतर बनाने से मुतालिक टेंडर के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों और मुजरिमाना साजिश के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विजिलेंस डायरेक्टोरेट की शिकायत पर इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। छानबीन के दौरान ये मालूम हुआ कि टेंडर के अमल में एक मखसूस टेक्नोलॉजी फर्म को फायदा पहुंचाने के मकसद से शरायत रखी गई थी, जिससे टेंडर का अमल महदूद होकर रह गया और एक मखसूस प्राइवेट कंपनी को नामुनासिब फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा छानबीन से ये भी इंकशाफ हुआ कि टेंडर के अमल में हेराफेरी करने के लिए कुछ अफराद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी अहलकारों और बिचौलियों के साथ रابطہ कायम किए हुए थे। बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने कहा है कि इससे कुछ अफराद और सरकारी अहलकारों के दरमियान मुबैना साजबाज का पता चलता है। रकम के लेन देन और इस जुर्म से हासिल होने वाली मुबैना रकम की पूरी जांच की जा रही है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मगरबी बंगाल में कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई जबकि 6 जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने का यह वाकया रात देर गए 2 बजे के आसपास पेश आया। मालूम हुआ है कि 5 मंजिला इमारत की 3री मंजिल से घना धुआं उठता हुआ देखा गया। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि मस्कूरा होटल में आग बुझाने से मुतालिक कोई निजाम नहीं था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती को खतरे के ताल्लुक से तशवीश का हवाला देते हुए अगले हुक्म तक ईरान के साथ तमाम तरह की तिजारत, कमर्शियल सरगर्मियां और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वजारत खारजा में कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हामिली ने कहा है कि इस फैसले का मकसद बैन अल-अक़वामी कानून और आलमी मेयारात के मुताबिक खित्ते के इस्तेहकाम की हिफाजत करना और बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत को बरकरार रखना है। इस ऐलान से कबल यूएई ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से खलीज की तरफ दागे गए 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल का पता लगाया था। बाद में वजारत दिफा ने बताया कि ये दोनों

0: मिसाइल बहरी जहाजरानी को निशाना बनाने के मकसद से दागे गए थे जो समंदर में जा गिरे। यूएई ने कहा है कि वो अमन और इस्तेहकाम के जरिए के तौर पर मुज़ाकरात, बाहमी तआवुन और इलाकाई हमाहंगी के तय अहद बस्ता है। ईरान की तरफ से यूएई के इल्जामात के सिलसिले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ईरान ने इंतबाह दिया है कि आबनाए हुरमुज तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अमरीका के साथ कोई अमन मुआहदा न हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुज़ाकरात कारों की टीम से कहा है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात को तब तक के लिए रोक दें जब तक के ईरान किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतजामिया ने ईरान के साथ सिफारती राबते के सिलसिले में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है कि जब आबनाए हुरमुज की सूरतेहाल और अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सिलसिले में इन दोनों ममालिक की तरफ से मुतनाज़े बयानात सामने आ रहे हैं। इस दौरान ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हुरमुज को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमरीका 14 निकाती मुफाहमत नामे के तहत वादों को पूरा नहीं करता, जिसमें नाकाबंदी खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासों को जारी करना और उसके तेल पर आयद पाबंदियों में नरमी लाना शामिल है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। ओडिशा के शिमाली हिस्से में सैलाब की सूरतेहाल अब भी संगीन है। तुगयानी पर आए हुए दरियाओं से 6 जिलों के बड़े इलाकों में पानी भर गया है और तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। अखवापाड़ा के मकाम पर बेतरनी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि ब्रह्मनी, सालंदी और सुवर्णा रेखा दरिया भी तुगयानी पर हैं, जिसकी वजह से कई गाँव पानी से घिर गए हैं। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासिर लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भद्रक, बंडारी, पोखरी और थीडी ब्लॉक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां गांव जेरियाब आ गए हैं और मामूल की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। जाजपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, केवंझार और मयूरभंज में भी सैलाब का पानी भर गया है और बहुत से लोगों को इमदादी अशिया, शेल्टर, खाने और पीने के पानी की किल्लत का सामना है। ब्रह्मणी और सालंदी दरियाओं में तुगयानी से बहरान बढ़ गया है, जबकि बैतरनी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सैलाब से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में एहतियात के तौर पर बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड के एम्स्टरवीन में FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमें अगले राउंड के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। भारतीय टीम के पास 2 मैचों से 3 पॉइंट हैं और उसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 ड्रॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 2 मैचों से सिर्फ 1 पॉइंट है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कल नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज की। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को हराया, जबकि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। लक्ष्य सेन ने पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस फिल्मोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सीधे मुकाबलों में अमरीका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को 21-15 और 21-12 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मर्दों दूसरी जानिब खवातीन के डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की भारतीय जोड़ी बल्गारिया की स्टेफनी स्टोएवा और गैब्रियला स्टोएवा की जोड़ी से 21-7 और 21-14 से हारने के बाद इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। मर्दों के क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज अपनी दूसरी इनिंग्स कल के 4 विकेट पर 84 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। ये मैच श्रीलंका के गाल बैनल अक्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल शाम मैच खत्म होने पर सोनल दिनुशा और धनंजय दे सिल्वा क्रीज पर थे। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन पर आउट हो गई थी। इस तरह श्रीलंका

0: को जीत के लिए 372 रन का निशाना मिला था। भारत ने पहले इनिंग्स में 462 रन बनाए थे, जवाब में श्रीलंका की टीम 284 रन ही बना सकी। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। फुटबॉल में आज एसिड बंगाल एफसी का मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की नजर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनैन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने ब्रिक्स ममालिक के वज़राए माहौलियात की मीटिंग से मुतालिक खबर को अपनी शेयर सुर्खी बनाया है। अखबार ने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि ब्रिक्स की भारत की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करती है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ के खदशात को एजेंडे में तरजीह दी गई है। अखबार इनकलाब ने वजारत दिफा के जरिए मुल्क सतह पर तैयार की जाने वाली 405 दिफाई मसनूआत की छठी फहरिस्त जारी करने से मुतालिक खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जुमरात को तमिलनाडु में होगी, इस खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तशकील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदउनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

हर सुबह अगर जोश और उम्मीदों से भरी हो तो दिन अच्छा गुजरता है, इसीलिए हम भी बेहतरीन गीतों के साथ आपकी सुबह को और हसीन बनाने आ गए म्यूजिकल दिल लगी लेकर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

इतिहास हमें सिखाता है कि बीते समय की घटनाएं केवल तारीखें नहीं होती, बल्कि वो हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो इसी कड़ी में आज के दिन 1919 में अफगानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, और आज के दिन 1949 में आज ही के दिन उड़ीसा की वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर को नए प्रशासनिक शहर के रूप में स्थापित करने का कार्य शुरू हुआ, और आज के दिन 1981 में भारत ने अपने पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, बने रहिए इसी चैनल पर। और आइए अब सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है।
2: जापान के उद्योग जगत से जुड़े हुए मित्र, वहाँ के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्राणियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable pipe cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using pipe natural gas in their kitchens at the earliest. Currently, there are 1.7 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added that the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbuilt connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that pipe natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over two tranches spanning 6 months. The National Testing Agency, NTA, has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where scrutiny will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid student protest over the issue. Issuing 8 notifications, state government said the cancelled exams include those conducted by Jharkhand Public Service Commission, JPSC, an outsource agency, TSR Data Processing Private Limited, since 2014. The exams cancelled include recruitment for drug inspectors, assistant professors, deputy collectors, dental doctors, assistant engineers, civil judges, additional public prosecutors and forest range officers, among others. Among the other major examinations cancelled are recruitment for lecturers in government polytechnics, senior scientific officers, assistant conservators of forest and other administrative and technical posts. The anti-corruption branch of Delhi government has arrested former Delhi minister and AAP leader Satyendra Kumar Jain, former CEO of Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and 4 others accused persons. Our correspondent reports that these arrests have been made in connection with alleged irregularities and criminal conspiracy in the tendering process relating to augmentation and upgradation of sewage treatment plants of the Delhi Jal Board. The United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing rising regional tensions and concerns over threats to regional and international security. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected 2 ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. Iran has not yet commented on the UAE's allegations. However, Tehran has warned that the Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. Indian Coast Guard's Daman Air Station conducted a swift operation to save the lives of 9 fishermen who were struck in a sinking boat. According to an official press release, the station received a distress call and immediately launched a Chetak helicopter to the location. The rescue operation was conducted successfully, bringing all fishermen to safety. While 3 injured fishermen received first aid at ICGS Daman, they were subsequently shifted to a government hospital and for further medical treatment. In hockey, the Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen in Netherlands today, with both teams battling for a place in the next round. And the India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall conditions over east and west Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Uttarakhand today. The weather agency predicted moderate to heavy rainfall over parts of northeast India, Delhi, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during the day. And that is the end of this news bulletin.

आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग एंड फुल ऑन एनर्जी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त ना।

शुरू हो चुका है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक शानदार सॉन्ग्स और साथ में होंगी ढेर सारी बातें। तो बने रहिएगा साथ और एंजॉय कीजिए अभी ये सुपरहिट सॉन्ग।

तो जनाब बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में ना हर कोई किसी ना किसी तलाश में है। किसी को प्यार चाहिए तो किसी को खुदा, और कोई खुद से ही मिलना चाहता है। और अगर आप भी हैं इनमें से एक, तो शफीक परवरी साहब की ये गजल आपके और मेरे लिए भी है। तो शफीक साहब कहते हैं कि ना तो जुस्तुजुए दवाए दिल, ना तो चारा घर की तलाश है, जो मजाक के गम से हो आशना, मुझे उस नजर की तलाश है। मैं हूँ राह रोह, मैं हूँ कारवां, मैं हूँ राह पर, मैं हूँ राह जन, मेरे पे जो खम जो समझ सके, मुझे उस खिज्र की तलाश है। मैं आया भी हूँ, मैं निहा भी हूँ, मैं कहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, जो बताए मुझको मेरा पता, मुझे उस खबर की तलाश है।

अरे उसकी ना किस्मत बहुत अच्छी है। कितनी बार ये बात आपने कही है या फिर किसी को कहते सुना है किसी के बारे में? तो अब जरा ये सुनिए। होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं। होते हैं कुछ लोग जो अपने सपनों को वक्त रहते पहचान लेते हैं। होते हैं कुछ लोग जिनके सपनों को उनकी खुद की नजरों में आने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। होते हैं कुछ लोग जिन्हें दुनिया से लड़ने से पहले अपने सपनों से लड़ना नहीं पड़ता। होते हैं कुछ लोग जो हर किसी को अपने सपनों का हिसाब नहीं देते और जो सपनों को मुकम्मल शक्ल देते हैं ना, वो कभी कुछ कहकर जवाब नहीं देते। होते हैं कुछ लोग जो किसी से बिना डरे करते रहते हैं अपने हिस्से की मेहनत और इस कायनात की नजरों में आते रहते हैं, और फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे लोगों को खुशकिस्मत कह देते हैं। पर वाकई होते हैं कुछ लोग जो कर दिखाते हैं जो वो करना चाहते हैं।

0: निभाइए जिंदगी की रीत और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी की आज की प्लेलिस्ट से ये प्यारे प्यारे गीत विद मी यानी नाज। अभी बात करेंगे उन सावधानियों की जो आपको इस मौसम में यानी मॉनसून में बरतनी है। मॉनसून के बीच जल भराव की स्थिति हमारे आसपास हो ही जाती है, तो ऐसे में मच्छरों की ब्रीडिंग भी काफी बढ़ जाती है। नतीजा डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का बना हुआ है खतरा। तेज बुखार सिर दर्द या फिर जोड़ों में दर्द जैसी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलें। और ध्यान रहे कि पीने के पानी का साफ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं अगर हम कर पाए तो टाइफाइड हैजा और स्टमक इन्फेक्शंस तैयार बैठे हुए हैं हम पर हमला करने के लिए। करना बस ये है कि पानी को अच्छे से उबालकर या फिर फिल्टर करके ही इस्तेमाल में लाएं। बाहर का या खुले में रखा कुछ भी खाने से बचें और जितना हो सके अपने हाथों से बना ताजा स्वच्छ और टेस्टी टेस्टी खाना खाएं।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।
0: और एंजॉय करना है साथ में ये गाना और साथ में बने रहना है म्यूजिकल दिल लगी और मेरे यानी नाज।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
6: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज, जहां आज की तारीख यानी 19 अगस्त क्यों है खास, इस पर करेंगे बात। तो जनाब, पूरी दुनिया आज के दिन को मना रही है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। साल था वो 1837, जब फ्रांस में डॉग्यूरो टाइप प्रक्रिया के आविष्कार के साथ ही फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी, और जिसमें तांबे की प्लेट पर तस्वीर उभारी जाती थी। इसके बाद साल 1839 में फ्रांस की सरकार ने इस तकनीक का पेटेंट खरीद लिया और पूरी दुनिया के लिए इसे मुफ्त उपहार यानी फ्री गिफ्ट टू द वर्ल्ड के रूप में घोषित कर दिया। तो चलिए हम भी सुनते हैं एक प्यारा सा उपहार माने एक प्यारा सा गीत, और फिर वापस लौटेंगे और जानेंगे कि और किन वजहों से खास है आज की तारीख।

वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस भी है आज। ये दिन उन अनसंग हीरोज यानी उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जो अपनी जान की परवाह किए बिना संकट की घड़ियों में, युद्ध के हालातों में या फिर प्राकृतिक आपदाओं के बीच दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। साल 2003 में

इराक के बगदाद में हुए बम धमाके में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डी मेलो और उनके 21 साथियों की शहादत की याद में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। आज का ये दिन हमें यही तो सिखाता है।

और अब बात कुछ ऐसी महान हस्तियों की जिनका जन्म आज यानी 19 अगस्त के दिन हुआ और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में देश का मान बढ़ाया। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक उनका सफर बेमिसाल रहा। इनके साथ ही मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और दक्षिण भारत के दिग्गज राजनेता एस सत्यमूर्ति का भी आज जन्म दिवस है। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1887 में हुआ था। सत्यमूर्ति जी को भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ और बेहतरीन वक्ता माना जाता है। साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के चमकते सितारे और महान निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी 19 अगस्त को ही हुआ था और वो साल था 1907। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही भुलाई जा सकती है।

आज का दिन आध्यात्मिक रूप से भी बेहद पवित्र है। 19 अगस्त की आज की ये तारीख जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जयंती के रूप में भी खास है, जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। इसके साथ ही आज महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी मनाई जा रही है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य रचना के जरिए भगवान राम के आदर्शों को हर घर और हर दिल तक पहुंचाया, और उनका लिखा एक एक दोहा आज भी हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है।

धूप हो या छांव हो, वो खेतों में ही रहता है। हर मौसम के थपेड़ों को वो चुपचाप सहता है। शहर वाले तो सिर्फ थाली का स्वाद जानते हैं, कैसे उगता है वो निवाला ये बस एक किसान जानता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ आपको बता रही हूँ, जो बदलते मौसम, कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार झेलने वाले हमारे अन्नदाताओं के लिए एक संजीवनी की तरह है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत को सुधारना, पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करना और बारिश पर निर्भर रहने वाले इलाकों में खेती की नई और आधुनिक तकनीकें पहुंचाना है, ताकि किसान भाई कम लागत और कम पानी में भी बेहतरीन फसल उगा सके और हमारी धरती का भी संतुलन बना रहे। क्योंकि अगर खेत हरे रहेंगे तभी तो हमारा पेट भरा रहेगा और हमारा ये देश मुस्कुराता रहेगा।

0: और इसी पॉजिटिव एनर्जी और एक खूबसूरत दिन की शुभकामनाओं के साथ म्यूजिकल दिलगी के आज के सफर को मुझे थामना होगा यहीं। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। आपका पसंदीदा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। उससे पहले आप जरूर जानिएगा हिंदी समाचारों और इंग्लिश न्यूज के जरिए देश और दुनिया का ताजा हाल। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz।
1: मैं जिंदगी

0: पूरे परिवार का कनेक्टिविटी पूरे भारत की BSNL फाइबर सुपर प्लस OTT 1199 रुपए वाला प्लान अब पाई सिर्फ 1111 में 200 Mbps 25 OTT 5000 GB डेटा और 24/7 अनलिमिटेड कॉलिंग सीमित अवधि का ऑफर। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-444 पर कॉल करें। BSNL हर परिवार का भरोसा।
1: ऐका ना, तुम्ही PM सूर्यघर मोफत बिजली योजने बद्दल ऐकलंय का?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल शून्य। आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रिडला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा PM सूर्यघर .gov.in वर।

0: डिझाईनचा
1: नवरा नवरीचा।

0: अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
4: We have been growing at a very sustained pace of 6-8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
3: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial records, documents and digital evidence related to the diversion and utilization of government funds. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has today embarked on an official visit to Singapore with a ministerial delegation to participate in the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable. The delegation comprised External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Union Minister of State for Electronics and IT Jitin Prasad. Established in 2022, the India-Singapore Ministerial Roundtable is a key high-level economic mechanism between India and Singapore. It provides a platform to review progress and explore new areas of collaboration across six pillars, including advanced manufacturing, connectivity, digitalization, healthcare and medicine, skill development and sustainability. In Jammu and Kashmir, in view of the prevailing adverse weather conditions, Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board has temporarily suspended fresh registration for the Sri Mata Vaishno Devi pilgrimage as a precautionary measure. The pilgrims who have already completed their registration and possess valid RFID cards are being permitted to proceed with the pilgrimage. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan on his arrival in the country for the fourth India-Singapore Ministerial Roundtable being held tomorrow. In a social media post, Dr. Jayashankar informed that he later joined Mr. Balakrishnan in laying the foundation stone of the new Chancery Complex of the High Commission of India in Singapore. The minister expressed confidence that the complex will reflect the new era of India-Singapore comprehensive strategic partnership and further strengthen services for the Indian diaspora. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 315 points to 76,921, while the Nifty shed 97 points to 24,058 when reports last came in. In hockey, Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the AFIH World Cup at the Wagener Hockey Stadium in Amstelveen, the Netherlands today. The match will start at 3 p.m. Indian Standard Time. Both teams will battle for a place in the next round. India is currently on 3 points from two matches. On the other hand, Indian women's team produced a dominant 6-1 victory against South Africa in the second group stage match of the AFIH World Cup at the Wagener Hockey Stadium last evening. In the BWF Badminton World Championships, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have advanced to the pre-quarterfinals of the mixed doubles event at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.

उर्दू के जाने माने शायर जिन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों को भी अपने अल्फाज से सजाया, जा निसार अख्तर। आज का कलाकार बेमिसाल इन्हीं बेमिसाल कलाकार पर आधारित है। आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं रजनी को।

मकबूल उर्दू शायर फजल हक खैराबादी के परपोते और मुस्तर खैराबादी के बेटे सैयद जानिसार हुसैन रिजवी को शायरी विरासत में मिली थी। 18 फरवरी 1914 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री के बाद उन्होंने अपने डॉक्टरेट पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें ग्वालियर वापस जाना पड़ा। क्या हुआ उसके बाद थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम पर्वत से, आवाज थी लता मंगेशकर की, और अभी जो गीत आप सुनेंगे वो है फिल्म बाप रे बाप से, और आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

गीतकार के साथ साथ जानिसार अख्तर ने शायर के रूप में भी बड़ा नाम कमाया। नज़्र-ए-बुता, सलासिल, जाविदा, घर आंगन और खाके दिल उनकी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। खाके दिल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पिछले 300 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी कविताओं के संकलन का काम सौंपा। यह पुस्तक हिंदुस्तान हमारा के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें अपने देश और इसके इतिहास पर आधारित बेहतरीन उर्दू कविताएं शामिल थीं।

रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ फिलहाल कलाकार बेमिसाल से रजनी को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफद की क्यादत कर रही हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इकतसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है और हॉकी में नीदरलैंड

नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन एक वजारती वफद के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं, जहां वह चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, नीज इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। जनाब जयशंकर कल मुनाकिद होने वाली चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बाद में उन्होंने जनाब बालाकृष्णन के हमराह भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखा। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि नया कॉम्प्लेक्स भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के नए दौर की अक्कासी करेगा और सिंगापुर में मुकीम भारतीय बिरादरी के लिए खिदमात को मजीद बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत और उसत देने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR फ्रेमवर्क के तहत आला सतह के राबते के सिलसिले में सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए। तकरीबन 70 सीनियर कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल भारतीय कारोबारी वफद भी उनके हमराह है, जिसका मकसद भारत और सिंगापुर के इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान जनाब गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISMR भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आला सतह का वजारती प्लेटफॉर्म है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ चौथी भारत सिंगापुर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद होगी, जिसके बाद मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब गोयल के हमराह वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर तिजारत सिंगापुर के अपने हम मनसब और सिंगापुर के दिगर आला सतह के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो आलमी मालियाती टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्कन इंस्टीट्यूट के सीनियर नुमाइंदों के साथ कई मीटिंग करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की इक्तसादी तरक्की को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और मुल्क 6-8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह तरक्की 4 अहम सतूनों समाजी, डिजिटल और फिजिकल बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, सभी की शमूलियत वाली तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग पर खसूसी तवज्जो पर मरकूज है। आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के सफर का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से मुतालिक काले धन को जायज बनाए जाने की छानबीन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुतालिक 2002 के कानून के तहत अंजाम दी गई। उसने मजीद कहा कि यह छानबीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट के जरिए मुबैना तौर पर दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक है। लखनऊ में कायम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसके उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर आजम खान अपने कुंबे के अरकान और साथियों के साथ असल ट्रस्टी हैं, रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और एक पब्लिक स्कूल चलाता है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की इन कार्रवाइयों का मकसद सरकारी फंड को दूसरे कामों में लगाए जाने से मुतालिक माली रिकॉर्ड्स, दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद हासिल करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के साबिक सदर आजहानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर गुलाह अकीदत नजर किए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें सदर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम मोदी ने आज

0: कोलकाता में आग लगने के वाकये के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने महलूकीन के कुम्मों से ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो देहरादून की इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2025-27 बैच के तरबियत पाने वाले अफसरों से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में ऑस्ट्रिया के सफीर डॉक्टर रॉबर्ट ज़िसे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरफैन ने जमहूरियत और चुनाव बंदोबस्त से मुताल्लिक भारत की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए विजन के मुताबिक जमहूरी ताउन को मजबूत बनाने के अपने मुशरक आज़म का यादा किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव बंदोबस्त और चुनावी अमले की तरबियत के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद उसत देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम की खातिर महफूज बुनियादी ढांचे में इम्तिहान के मखसूस मराकज, साइबर सिक्योरिटी निज़ाम, इदारा जाती महारत और इम्तिहानात से मुतालिक कामकाज के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को इदारा जाती शक्ल दिए जाने की जरूरत का इरादा किया है। नीट UG 2026 पेपर लीक से वाबस्ता दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने तालीम की वजारत के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इस बात की तफसील बयान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करें कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। आज खेल के पांचवें दिन श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 206 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि जीतने के लिए उसे 372 रन का निशाना मिला था। इस तरह भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन बनाए थे। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त मुताबिक 3:00 PM शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने नए भर्ती होने वाले दिफाई अहलकारों की तस्दीक के अमल को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल वजारत दिफा से मुंसलिक है, जो नए भर्ती होने वाले अहलकारों की असनाद और दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी के तहत जमीन के मालिकान और तरक्याती इदारों की रजाकाराना शमूलियत के जरिए मनसूबाबंद शहरी तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इकतसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG पेपर लीक के बाद इम्तिहान में इसलाहात से मुताल्लिक राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशात के नफाज के लिए मरकज से जवाब मांगा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 4th भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफद की क्यादत कर रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Union Minister Ashwini Vaishnaw says government investing around $130 billion in public investment every year, resulting in sustained economic growth. Supreme Court seeks centre's response for implementing Radhakrishnan Committee's recommendations on exam reforms after NEET UG paper leak. Weather Department forecasts very heavy rainfall over parts of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. India defeats Sri Lanka in first test by 165 runs. Manav Sutar takes 6 wickets. एंड इन मेंस हॉकी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय

0: के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणि समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण

0: कूलागार्ड में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उधर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 प्रसारित करत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात नीता मुतालिक यांच्या गायनात राग सूरमल्हार। विलंबित बंदिश 3 तालामध्ये निबद्ध आहे तर द्रुत बंदिश हे सुद्धा 3 तालामध्ये निबद्ध आहे। विलंबित बंदिशीचे बोल आहेत गरजता आहे तर द्रुत बंदिशीचे बोल आहेत बदरवा बरसना आहे। त्यांना तबला साथ केली आहे अमोल माळी यांनी आणि हार्मोनियमची साथ आहे तुषार केरकळ यांची। तर ऐकूया नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात

अरे हलवो पेंडा बर्फी बड़ा का दाबी दाबी ने खाए। ओ तो ये बगला भगत बिचारो इतो उपवासी कहवा। अरे वार करे तहवार करे भीम ग्यारस गोकुलाठम शीतला सतम रामनवमी। अरे वार करे।

योगा।

लंपियो तिलक कम जो कानी दाढ़ी आ तारी दाढ़ी कड़ना

0: हूँ कड़ी, हाँ हाँ बगारी तू हूँ कड़ी।
1: अरे इनमें क्या रखे है?
0: तने के चाहिए गुलगुला, दाल को शीरो के घेवल,
1: मारे तो मुंडे में पानी आ गयो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें 4 रेलवे की परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रूपये की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को सेवाओं के दायरे में लाएंगी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर भद्रक चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर चौथी लाइन, गुमिड़ी पुंडी गुदुर तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030 से 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसाखंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story. हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
2: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: उत्तर

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
1: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल स्तर के साथ सिंगापुर पहुंची। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विशेष रूप से प्रश्न पत्रों को सील करने के लिए स्थायी समिति, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थागत विशेषज्ञता के निर्माण से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विस्तृत जानकारी मांगी। भारत ने गोल में आज 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Projects worth over 13,000 crore rupees were approved by the Union Cabinet today under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. These include 4 railway and 1 highway project. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave the details about the projects while briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today. Mr. Vaishnav informed that 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
3: आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए।
4: टुडे 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू रेलवेज, व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। अमंग द 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स, सम इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोड लिंक्स ऑन द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट, व्हाइल अनदर इज द कोड लिंक ऑन द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर विया सीतामढ़ी टू सोलबरसा। दिस प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,881 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6-8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnav was addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. The Supreme Court today reiterated the need to institutionalize the National Testing Agency or NTA with secure infrastructure, dedicated testing centers, cyber security systems, institutional expertise, and a permanent mechanism for examination-related operations to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Secretary for the Union Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. President Draupadi Murmu has said that the world of technology, media, economics and public policy is changing rapidly. She stated this while interacting with officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service, who had called on her at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion, she advised the officers to be judicious in their decisions, compassionate in their conduct and unwavering in upholding integrity. Kolkata police has formed a special investigation team to probe the death of 9 people in a fire at a hotel on Mirza Ghalib Street in Kolkata's New Market area. Industry Minister Tapash Roy and Municipal Affairs and Urban Development Minister Agnimitra Pal visited the spot this morning. She questioned how the hotel was allowed to operate despite allegedly lacking adequate fire safety arrangements and an emergency exit. Heavy rain in Uttarakhand, particularly in the hilly areas, has disrupted road connectivity at several places. Efforts are underway to restore connectivity at the earliest. Flood situation remains critical in several parts of North Odisha, with Bhadrak among the worst affected as swollen rivers inundate villages and disrupt normal life. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall conditions over North Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. Iran's Armed Forces Chief of Staff, Major General Ali Abdullahi, has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. He also alleged that the presence of military aircraft stationed at regional bases cannot be without the knowledge of the host countries. Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. Sensex declined 326 points to close at 76,910. In men's cricket, India beat host Sri Lanka by 165 runs in the first test of the two-match series in Galle today. India now leads the two-match series 1-0. Chasing a target of 372, Sri Lanka were bowled out for 206 during the post-lunch session on day 5, handing India a comfortable victory. And that is the end of this news bulletin.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: info@nicom.gov.in। निर्धारित आवेदन प्रपत्र को ईमेल के माध्यम से भेजा जाना है इस पते पर recruitment@vamnicom.ac.in। नाविक भविष्य निधि संगठन मुंबई के कार्यालय में नाविक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संबंधित ब्यौरा देखिए इस वेबसाइट पर www.dgshippingov.in www.dgshipping.gov.in। केंद्रीय सूचना आयोग में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट तथा स्टाफ कार ड्राइवर। पदों की संख्या योग्यता के नियमों शैक्षणिक योग्यता आरक्षण वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cic.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर ऑल रिक्रूटमेंट सेक्शन में सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में आप सभी का। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की कुछ खास रिपोर्ट्स भी आपको सुनवाएंगे और साथ ही खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे एक नज़र। परिक्रमा कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के संघ के साथ मैं हूँ विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
2: Namaskar Vishal, adab and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very very fresh episode of Parikrama. And so Vishal, today of course Hasbid Dastoor jo hum log laate hain taza tareen khabrein, uske alawa a very interesting topic for our Dateline India because today is World Photography Day, so us pe bhi charcha karenge. Aur jo last segment hai Vishal aaj ka, I think most of the listeners would be looking forward to it, even we are looking forward to it because ek bahut hi azim shayar ko yaad karenge, uske alawa ek बहुत ही अजीम म्यूजिक कंपोजर को।
1: जी बिल्कुल,
2: सो ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
1: प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है।
2: Supreme Court seeks Centre's response for implementing Radhakrishnan Committee's recommendations on exam reforms after NEET UG paper leak.
1: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की संभावना।
2: इंडिया डिफीट श्रीलंका इन फर्स्ट टेस्ट बाय 165 रन, मानव सूथर टेक्स 6 विकेट्स।
1: और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान से।
2: And as I had mentioned, Vishal, that today is World Photography Day and that's our topic for today's Dateline India.

0: early experiments in Europe to the extraordinary richness of Indian photography. Our story begins in 19th century France. Inventors Nives and Louis Daguerre worked on methods of producing permanent images using light and chemistry. Nives had already produced an early permanent camera image years earlier, while other inventors, including Henry Fosse Talbot, were developing alternative photographic processes. Talbot's calotype process, announced in the early 1840s, was particularly important because it used paper negatives that could be used to make multiple prints.
1: सर, फोटोग्राफी का जन्म जो है असल में एक्सपेरिमेंट, कंपटीशन और सहयोग की एक कहें तो कहानी थी, और जब ये टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध हुई तो फोटोग्राफी का एक सफ़र शुरू हुआ, और ये सफ़र हैरानी की हद तक तेज़ी से भारत तक भी पहुंचा। 1840 के दशक की अगर हम भारत की कल्पना करें, उसका तसव्वुर करें, तो तब स्मार्टफोन नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, डिजिटल कैमरे भी नहीं थे, और तुरंत फोटो खींचने की कोई सुविधा भी नहीं थी। फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी ने देश भर के लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित किया था। दिसंबर 1839 तक भारत के अखबारों में नए डेगुएरो टाइप कैमरे के आने की खबरें छपने लगी थीं। 1840 तक कलकत्ता में फोटोग्राफिक कैमरों के विज्ञापन भी दिए जाने लगे थे। इसके बाद फोटोग्राफी तेज़ी से विकसित हुई। शौकिया लोगों, पेशेवर फोटोग्राफरों, पत्रकारों और औपनिवेशिक काल के अधिकारियों ने इसे अपनाया। 1850 के दशक में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में फोटोग्राफिक सोसाइटियां बनी। कैमरे ने भारत के लोगों, इमारतों, प्राकृतिक दृश्यों, स्मारकों और रोजमर्रा की जिंदगी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था।
0: That's so right, विशाल. In fact, if you remember, if you look at very old photographs, जो maybe वो बेलो कैमरा से खींची जाती थी, या जिनका फ्लैश बल्ब एक बार में फट जाता था, so people actually used to hold their breaths, क्योंकि उनसे कहा जाता था हिलिएगा नहीं।
1: कैमरे के पीछे कैमरामैन पर्दा डाल करके, उसमें अपने सर पे भी पर्दा डाल करके, कैमरे को भी ढक करके फोटो लिया करते थे।
0: Yes, absolutely. So you know that is how you know photography has evolved, and that is how probably humans have always been fascinated, you know, with these pictures, चाहे वो अपनी हो चाहे चीजों की हो। But when I was talking about portraits, you look at all the pictures of those days, people are literally standing as if they are standing in attention and holding their breaths, because वहाँ पे जो कैमरा फोटोग्राफर होता था, because obviously shutter speed इतनी evolved नहीं थी, तो जरा सा भी मोमेंट ब्लर कर सकता था। सो लिटरली पीपल यूज टू होल्ड देयर ब्रेथ्स। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वेल, इंडिया डिड नॉट मेरली रिसीव फोटोग्राफी, इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इट। द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री गिव फोटोग्राफर्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजुअल वर्ल्ड टू एक्सप्लोर, फ्रॉम द हिमालयाज टू द डेक्कन, फ्रॉम द घाट्स ऑफ बनारस टू द प्लेस टू द पैलेसेस ऑफ राजस्थान, फ्रॉम टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, फ्रॉम द रॉयल कोर्ट्स टू विलेजेस, इंडिया became a vast photographic canvas.
1: और अगर हम भारतीय फोटोग्राफी के चंद बड़े व्यक्तित्वों की बात करें, तो एक नाम पर विशेष रूप से ख्याल ध्यान जाता है, और वो है राजा दीनदयाल। 1844 में उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जन्मे दीनदयाल ने फोटोग्राफी को गंभीरता से अपनाने से पहले इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन के तौर पर ट्रेनिंग ली थी। आगे चलकर वे 19वीं सदी के भारत के सबसे मशहूर फोटोग्राफरों में से एक बने। उनकी तस्वीरों ने हमें भारतीय राजघरानों, वास्तुकला, प्राकृतिक दृश्यों और आम लोगों की जिंदगी की दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने ग्वालियर, खजुराहो और मध्य भारत के दूसरे इलाकों की बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें लीं, और बाद में हैदराबाद के निज़ाम के दरबार से भी जुड़े। उन्हें वायसराय का फोटोग्राफर नियुक्त किया गया था।
0: That's right, and of course, among the recent names and most prominent among of them all, probably appears of Raghu Rai, who passed away recently. But his photographs, his works through, you know, the way his lens captured India, I think it will be there for posterity. And chahe wo aam logon ki zindagi ho sadkon pe, or just capturing the beauty of the Taj Mahal, I think the lens of Raghu Rai has proven that photography is an art. And well, photography in India was not only just beautiful pictures, it actually became a tool for documenting reality, architecture, even society and political events. In fact, when the independence movement was there, to aap us zamane ki pictures dekhe, or probably after it gained independence, there's a very iconic picture of our first prime minister Jawaharlal Nehru that was captured by Homai Vyarawalla. She was the first female photographer, and mere khush kismati ki main unse mili thi, and then she

0: described that moment, that among a swarm of photographers, she was the only woman carrying that camera. And उस फोटो के पीछे ना वो कहानी ये बताई कि एक्चुअली वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी. पीछे देयर इज अ बोर्ड आल्सो वेयर नेहरू इज स्टैंडिंग दैट यूज ऑफ कैमरास इज फॉरबिडन, एंड येट हुमायूं व्यारावाला हैज टेकन दैट आइकॉनिक पिक्चर.
1: जी सायरा, आपने हुमायूं व्यारावाला की बात की और इन्हें भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर याद किया जाता है. 1913 में एक पारसी परिवार में जन्मी हुमायूं 1942 में दिल्ली आ गई थी. उनके कैमरे ने भारत के इतिहास के कुछ सबसे अहम पलों को कैद किया और ब्रिटिश शासन के आखिरी साल और आजाद भारत का जन्म, जैसा कि अभी सारा ने बताया. तो फोटो जर्नलिज्म की एक असाधारण ताकत की हम बात करें तो वो यही ताकत है. और अखबार शायद ये खबर दें, आज इतिहास रचा गया, लेकिन फोटोग्राफर हमें उन लोगों के चेहरे के भावों को बहुत नजदीक से दिखा सकता है जो वहाँ उस समय उस महान अवसर पर मौजूद होते हैं.
0: That's right, and it is always said, Vishal, that a visual carries more impact than words, and even the reach is so vast because एक विजुअल का इम्पैक्ट एक अनएजुकेटेड या इलिटरेट इंसान के इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन अगर शब्द जो है जब तक किसी को पढ़ना लिखना ना आता हो, वो उन शब्दों के लिए कुछ निकाल अक्षर है.
1: हर तस्वीर कुछ कहती है सायरा, और एक तस्वीर हजार शब्दों की जगह ले सकती है.
0: That's so right. तो अगर आपको होली की मस्ती बयान करना हो तो आप बयान करने में सोचेंगे क्या शब्द यूज करें, बट इफ यू जस्ट टेक अ पिक्चर प्रॉब्ली मे बी जब लठमार होली खेली जा रही होती है या वृंदावन की, सो आई थिंक इट जस्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इजंट इट. इवन द लैम्प्स ऑफ दिवाली और जस्ट द ग्रैंडियर ऑफ दुर्गा पूजा विच इज जस्ट 2 months फ्रॉम नाउ, और मे बी जस्ट यू नो द हसल बसल एट रेलवे स्टेशन, or maybe the boats of Banaras, the deserts of Rajasthan, the tea gardens of Assam, the Himalayas, the backwaters of Kerala. Everything can be just, you know, captured in the camera and probably live for posterity, as I say. And perhaps that is what makes Indian photography so rich, that India is not just one story. These are millions of stories probably woven into one big picture.
1: और समय के साथ साथ फोटोग्राफी में बहुत बड़े बदलाव भी आए हैं. शुरुआती फोटोग्राफरों को भारी भरकम कैमरों और उपकरणों और सावधानी से तैयार की गई प्लेटों और फिर लंबे एक्सपोजर के समय के साथ काम करना पड़ता था, और फिर फिल्म आई और उसके बाद रंगीन फोटोग्राफी का दौर शुरू हुआ और ऑटोमेटिक कैमरे भी आए और अब तो डिजिटल कैमरों का जमाना है.
0: एग्जैक्टली, नाउ दीज डेज यू लुक एट, यू नो, पीपल आर शूटिंग फिल्म्स ऑन आईफोन्स, कैन यू इमेजिन. एंड आई स्टिल रिमेंबर जो आपने कहा ना, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप करते थे,
1: जी,
0: ओ माय गॉड, दैट इज अनदर एक्सपीरियंस व्हेन यू एंटर द डार्क रूम एंड सडनली एवरीथिंग अपीयर्स ब्लैक, बट स्लोली योर आईज गेट एक्लिमेटाइज्ड टू द डार्कनेस एंड देन यू सी एवरीथिंग क्लियरली इन दैट रेड dim light. और वो जो एक लम्हा होता है ना विशाल, की जब आप फोटो धो रहे होते हैं इन द वॉश टॉप और फिर धीरे धीरे वो उभर के आ रही होती है, आई थिंक अ पर्सन हु हैज डन दिट वुड प्रोबब्ली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट, दैट इट जस्ट गिव्स यू इमेंस जॉय एट दैट मोमेंट. एंड फोटोग्राफी का तसव्वुर लेकिन कैमरा के बिना ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है.
1: और आज फोटोग्राफी बहुत इंस्टेंट हो गई है, आज स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमरे हैं, और फोटोग्राफी को हर व्यक्ति की पहुंच मिला दिया है. yes. अब हर कोई कभी भी कहीं भी तस्वीरें खींच सकता है और उन्हें सही कर सकता है और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर सकता है.
0: That's right, but I think sometimes जैसे कहते हैं ना कि when you get things in abundance तो थोड़ी सी वैल्यू कम भी हो जाती है. If you remember those days जब घर पे हम लोग फिल्म रील डालते थे तो उस रोल में 36 फिल्म्स होते थे, फ्रेम्स रहते थे, तो एक एक फोटो हम लोग बहुत यू नो बड़े उससे लेते थे कि अच्छा इज दिस मोमेंट वर्थ कैप्चरिंग और नॉट. दीज डेज एवरीबडी इज हैविंग अ कैमरा इन द हैंड थ्रू द स्मार्टफोन्स एंड वी आर हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पिक्चर्स इन आवर क्लाउड्स, यू नो, बट उस वक्त हम लोग एक एक फोटो बहुत ही कहते नहीं सिसक सिसक के उस पर खर्च करते थे कि ओके इस लम्हे को चलो केक कटने वाला, हाँ इस बारी बारी फोटो तो होना चाहिए. बट दीज डेज वी हैव लाइक मल्टीपल टेंस एंड thousands of our pictures, but nonetheless of course photography is still something that is very much in vogue. I think that's the reason so many you know mobile companies, they are just focusing on the camera and the photo quality. And as I had mentioned to Vishal that photography is probably the imagination of photography is incomplete without a camera, lekin pata nahi listeners ko ye pata nahi hai ya nahi, but I must share that camera actually comes from the Arabic word kamra which means room. And pehla jo camera था वो एक्चुअली कमरा ही था और एक पिन होल से उसमें लाइट आई थी एंड दैट क्रिएटेड अ वर्चुअल अपसाइड इमेज, सो दैट इज व्हाई अ कैमरा इज कॉल्ड दैट, बिकॉज़ योर पहला एक्सपेरिमेंट अरब में हुआ था. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द इन्वेंटर, सम अरबिक गाय, बट ऑफ कोर्स दैट इज

0: How it came into being.
1: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने. देखा जाए तो कुल मिलाकर के तस्वीरें सायरा वो आईना हैं जिनमें हम बीते समय को दोबारा देख सकते हैं.
0: That's very right. So on this World Photography Day, perhaps we should look at our own photographs a little differently. In every photograph, there is a story, and behind every story, there is a human eye that chose to look closely. So here's wishing a world happy photography world, happy World Photography Day to all our listeners.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और आज जानते हैं कि उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं.
0: Well, अब वो हिस्सा शुरू हो गया है विशाल, in which we do the parikrama of the country, and that's why the show is called Parikrama. So we are starting our journey with a very interesting story. Well, India's rich handloom tradition is not only a part of its cultural heritage, but it can also play an important role in creating a more sustainable future. One such effort is Weave the Future, a national platform started by the Ministry of Textiles. The fifth edition of Weave the Future is being held at Handloom Hut in New Delhi from 13th of August to 23rd of August 2026. Union Minister of Textiles Giriraj Singh, on the eve of Independence Day, inaugurated the event in New Delhi. Weave the Future brings together weavers, artisans, designers, brands and innovators on one platform. We have a report.
2: The exhibition showcases the work of 24 nationally recognized weavers presented by the National Handloom Development Corporation. More than 30 selected brands are also taking part in Weave the Future 5.0. These brands represent different craft and design traditions from across the country, including Goa, Pune, Auroville and other regions. A special focus of this edition is on the indigenous and regenerative fibers. Visitors can see products made using materials such as wool, silk, hemp, banana fiber, bamboo, nettle, pineapple leaf fiber, and lotus fiber. These materials show how natural resources, traditional knowledge and modern design can come together. A key highlight at the venue is the Vishwakarma Gallery, a permanent exhibition showcasing rare textiles from the landmark Vishwakarma exhibition series held between 1981 and 1991. Developed through collaborations between the weavers' service centers and artisan communities, the collection offers a remarkable window into India's textile heritage and its evolution in the decades following the independence. Some of the upcoming events are Sut Ki Kahani on 21st of August, a hand-spinning workshop with Kandu using the traditional Takhli, Matter of Textile on 22nd of August, and Primary Colors from Nature on 23rd of August, a natural pigment workshop in collaboration with Material Library of India. Visitors will experience immersive installations exploring India's indigenous fiber landscape and the relationship between geography, agriculture, ecology, craftsmanship and textile production, alongside interactive workshops led by practitioners and experts that encourage hands-on learning and dialogue. With Saklen Akhtar's report, Chigyasa Pandey for Parikrama.
1: मॉस्को में चार दिन का इंडिया डे फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा. इसमें भारतीय और रूसी समुदाय संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे. ये फेस्टिवल इस महीने की 20 से 23 तारीख तक मॉस्को के गोस्तिनी दौर में होगा. संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. लगभग 20 स्पेशल जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियां, डांस और आयुर्वेद को जानने का मौका मिलेगा. उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर शामिल होंगे. 200 से ज़्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले परफॉर्मेंस में हिस्सा लेंगे. इसके अलावा आने वाले लोगों को कुकिंग मास्टर क्लास, रेस्टोरेंट और असली भारतीय व्यंजन व खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों के जरिए भारतीय खाने का अनुभव करने का एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा.
0: And now when we are moving towards another story, well, a very interesting story is coming in, Vishal. लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आप कभी शाम को चाय के साथ कुछ वाई खाने का मन करता है?
1: चाय वाई में तो स्नैक्स में तो फिर बहुत एक हेल्दी स्नैक्स की जब बात करें तो मखाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: एब्सोल्युटली, एंड यू नो हम लोग जो है पहले तो उसको कुछ नहीं समझते थे, बट रिसेंटली डाइटिशियंस हैव बीन टेलिंग दैट यू नो इंस्टेड ऑफ ग्रैबिंग दोज अनहेल्दी चिप्स और यू नो

0: स्नैक्स इट जस्ट गो फॉर मखानास जो हम लोग के कल्चर में हमेशा से रहे हैं एंड ऑफ कोर्स फॉक्स नट दे हैव इमर्ज एज अ फास्ट ग्रोइंग एग्री फूड प्रोडक्ट इन इंडिया ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड इवन इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड ओवर द ईयर्स मखाना हैज इवॉल्व फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ बिहार इन टू अ वाइडली कंज्यूम्ड हेल्थ फूड अक्रॉस द फूड फैक्ट्री अक्रॉस द कंट्री एंड इन फैक्ट विशाल अगर आप देखें हम बहुत इस चीज़ पर गौर करते हैं कि आजकल के दौर में जहाँ हर चीजें मिलावट हो रही है एक मखाना ऐसी खाने की चीज है जिसमें ना कोई पेस्टिसाइड्स होते नथिंग इट्स अ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फूड सो इवन इफ यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट टू हैव फॉर स्नैक्स विद योर इवनिंग टी टुडे प्लीज ग्रैब द मखानास रोस्ट देम इन देसी घी सिंपली स्प्रिंकल सम काला नमक एंड आई थिंक इट्स जस्ट रेडी टू रॉक लेट्स हियर मोर इन दिस रिपोर्ट
1: India is the world's largest producer of makhana and Bihar contributes nearly 3/4 of the country's production and around 80-85% of the global supply among West Bengal and Assam. India exports about 40% globally including the United States, Canada and the United Arab Emirates among the top importers together account for 77% of the total makhana export. India's monthly domestic consumption of popped makhana is estimated at over 3,000 metric tons. In line with the sector's growing importance, government initiatives including the National Makhana Board and over 476 crore rupees central sector scheme support research and innovation, improving the availability of quality seeds, processing, branding, exports and farmers. With Arzu, Saklan Akhtar for Parikrama.
0: And now we head to my favorite place, Vishal. We're going to Goa. Well, the Indo-Israel Center of Excellence is giving a fresh push to flower farming in Goa. With 12 lakh rose saplings set to be distributed to farmers, the initiative aims to increase local production and create new income opportunities. Let's hear more from our correspondent.
2: The Indo-Israel Center of Excellence, which promotes modern farming techniques and improved crop production, is giving a push to flower cultivation in Goa. Through the center, 12 lakh rose samplings will be distributed to local farmers, helping them meet the growing demand during Diwali, Dashera, weddings and other events. Much of Goa's flower supply currently comes from other states. The initiative aims to help local farmers tap into this market and earn better returns. The center is also supporting the distribution of planting material for fruits, vegetables and other crops. Women from self-help groups are being encouraged to use unused farmland. The aim is to increase local production, improve farm income and reduce Goa's dependence on agricultural produce from outside the state. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Parji.
3: Aur ab खेल के मैदान की जानकारी दे देते हैं आपको भारत ने गोल में आज दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई भारत की ओर से मानव सुधार ने 6 विकेट लिए
0: And if we talk about some business news, well, benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. Sensex declined 326 points to close at 76,910. Nifty lost 77 points to settle at 24,078. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
3: और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती
4: टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ब्रेव हार्ट सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति एनोरेट पार एक्सलेंस एस सत्यमूर्ति हेल्ड फ्रॉम तिरुमयम इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ पुदुकोट्टई ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु
5: He actively took part in the protests against the colonial rulers, be it partition of Bengal, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre or Simon Commission. Satyamurthy was at the forefront. Sundara Shastri Satyamurthy was also the political mentor of senior Congress politician K. Kamaraj.
4: Today is also the birth and death anniversary of P. Krishna Pillai, a revolutionary freedom fighter associated with Vaikama Satyagraha, Salt Satyagraha and Guruvayur Temple Movement.
5: Although one of the founders of the left movement in the present-day Kerala, Krishna Pillai began his career in the Indian National Congress, first as a Gandhian and then as a Congress socialist. He was an active volunteer of Vaikam Satyagraha for Temple Entry 1924, which was led by E.V. Ramasamy. The success of the long-drawn protest led to the opening of temples to all the people of Hindu religion.

0: Vaikam.
1: He took part in the Salt Satyagraha March from Kozhikode to Payyanur in 1930 and braved the brutal blows of the British to hold afloat the tricolour in true Gandhian style. At the time of his untimely death, on August 19, 1948, of snakebite, Krishna Pillai was perhaps the most familiar face in the homes of the labourers and peasants of Kerala.
2: और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म. और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है हमारे सामने जसवंत सिंह रावत. भारतीय थलसेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बांदियों में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था. और उत्तराखंड की पावन भूमि एक और धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान की स्थली रही है, तो वहीं ये भूमि अनेक वीर और वीरांगनाओं की जन्मस्थली भी रही है. 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं. हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था और सेना द्वारा उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानाग दिवस मनाकर अमर शहीद को याद किया जाता है.
3: Today is also Utpal Dutt's death anniversary, and of course he doesn't need any introduction. A very renowned actor, director, and even a very, very accomplished playwright. He was primarily an actor in Bengali theatre, where he became a pioneering figure in modern Indian theatre when he founded the Little Theatre Group in 1949.
2: आप उत्पल दत्त की बात कर रही हैं. जी, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी एक समान अमिट छाप छोड़ी. एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया और उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में भी बहुत उसके साथ याद किया जाता है, शिद्दत के साथ. और वर्ष 1979 की एक सुपरहिट फिल्म आई थी गोलमाल, और उसमें जो उन्होंने किरदार निभाया था भवानी शंकर का, उस किरदार को आज भी लोग याद करते हैं.
4: आपका शुभ नाम है?
5: राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा.
4: बैठिए बैठिए. सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
5: क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है.
4: ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए.
5: मुझे आज्ञा दीजिए सर.
4: क्यों क्यों, क्या हुआ?
5: अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर. मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती, लेकिन आज पता चला कि पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी.
4: बिल्कुल नहीं, हमारे पिताजी ने जो सिखाया ठीक सिखाया.
5: जरा ये बैलेंस शीट देखो, ये किस घमंड में बनाई है सर. ये आदमी तो बिल्कुल दफर है.
4: ये मैंने बनाई है.
2: और आज ही पुण्यतिथि है मोहम्मद जहूर खयाम की. और खयाम एक जाने माने संगीतकार थे हिंदी फिल्मों के. इन्होंने 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत दिया और वर्ष 1982 में फिल्म उमराव जान के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था.

yet refuse to look away from the wounds of the society. And of course, जो जानिसार अख्तर की जो कलाम रहे हैं उसके अलावा उनके कह सकते हैं कि उनका नाम लेती है ऐसा लगता है नावशा कि किसी पुरानी शाम की खुशबू अचानक से हवा में घुल गई हो, एक ऐसी शाम जिसमें सिर्फ मोहब्बत की नरमी तो है ही, तन्हाई की थोड़ी उदासी भी है और लेकिन आने वाले मुस्तकबिल या आने वाले कल सवेरे की मोहब्बत भी. और आई थिंक द बेस्ट सॉन्ग दैट हैज़ एवर बिन रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा आई वुड से इज़ ए दिले नादान फ्रॉम रज़िया सुल्तान. And coincidentally, it's written by Janisar Akhtar and composed by Khayyam. So we pay tribute to both the stalwarts through this song.

0: जी, नूरी फिल्म का ये गाना और जानिसार अख्तर का लिखा हुआ, और बता दें आपको कि इसे भी संगीतबद्ध किया था संगीतकार खय्याम ने। और अब समय हो रहा है, हमें यहीं लेनी होगी अनुमति, तो दीजिए इजाजत विशाल शर्मा और सायरा मुस्तफा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन और कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 42 किलोमीटर से अधिक लंबी यह परियोजना 3,590 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो को

जुमे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल करने की बात कही गई है। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंची। यह बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और खेलों में भारत ने गोल में आज दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में, आपकी रेडियो सखी रेणुका के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी शायरी से, जिसे लिखा है इरफान सिद्दीकी ने। ये कहते हैं, उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। ये तो बहुत सही कहा कि ख्वाब देखने के लिए किसने कहा है कि नींद की जरूरत होती है, आप खुली आंखों से भी तो ख्वाब देख सकते हैं। पहला गीत भी जो है वो भी कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है हमसे, और ये गीत आपके लिए पेश है लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जितेंद्र मोहन सिन्हा रहबर कहते हैं, छुपे हैं सात पर्दों में ये सब कहने की बातें हैं, छुपे हैं सात पर्दों में ये सब कहने की बातें हैं, उन्हें मेरी निगाहों ने जहां ढूंढा वहां निकले। और छुपना, बताना, छिपाना, राज, ये सारी तो दिल का एक खेल है। और अगला जो गीत है ना, वो भी हमसे यही कहना है, कहना चाह रहा है कि कुछ बातें छुपाई नहीं छुपती और कुछ बातें हम जानबूझकर छुपा देते हैं। अगला गीत आपके लिए पेश है विनोद राठौड़ की आवाज में, और फिल्म है बाजीगर।

आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है। जी हाँ, आंखों से आप प्यार जता सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, दिल की बातें बता सकते हैं, और आपको पता है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला गीत जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, और ये फिल्म है हीरो नंबर 1।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम चल रहा है गाते गुनगुनाते। पेश है आपके लिए एक और शायरी। जी हाँ, हमने पूछा दीवानगी क्या होती है, साजन वो बोले दिल तुम्हारा और हुकूमत हमारी। खैर, दिल भी हमारा है और हुकूमत भी आपकी ही है। और आपके लिए पेश है अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में, और फिल्म है हम है राही प्यार के।

वो आए तो रंग सवरने लगते हैं, वो आए तो रंग सवरने लगते हैं, जैसे बिछड़ा यार भी कोई मौसम है। ये कहते हैं फरहत जाहिद। और अगला जो गीत है ना, वो भी रंगों के बारे में ही बात कर रहा है। पेश है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में रंगीला फिल्म से ये गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये गीत आप सुन रहे थे जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में, और फिल्म थी दूल्हे राजा। अगला गीत आपके लिए पेश है बड़े मियां छोटे मियां फिल्म से।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करने जा रहे हैं अपना कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा कार्यक्रम। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर वही है 9868868753, या आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com। और मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025 से 27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल

0: U.S. military forces. The armed forces chief said Tehran is closely monitoring military activity at regional bases. His warning comes as the U.S.-Iran conflict enters its fourth month, while the Pentagon evaluates its military footprint in West Asia with a view to reducing its presence. In the BWF Badminton World Championships, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto stormed into the pre-quarterfinals in New Delhi. Home favourites Sattvik Sairaj and Ki Reddy and Chirag Shetty have also advanced to the pre-quarterfinals after receiving a walkover. However, men's singles player Lakshya Sen and women's singles player Unnati Hooda bowed out of the tournament. In men's cricket, India beat hosts Sri Lanka by 165 runs in the first test of the two-match series in Galle today. India now leads the two-match series 1-0. Chasing a target of 372, Sri Lanka were bowled out for 206 during the post-lunch session on day 5, handing India a comfortable victory. And with that, we end this news bulletin.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: किया और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया। ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भी इसी व्यापक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए रणनीतिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और ऊर्जा तथा रक्षा के क्षेत्र में हाल के प्रयास किस तरह भारत को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आए व्यवधान जैसे कई घटनाक्रम देखे हैं। ऐसे समय में ये स्पष्ट हुआ है कि संकट के दौरान देश के पास अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीक और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था होना जरूरी है ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले ले सके। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। घरों में बिजली से लेकर खेतों की सिंचाई, कारखानों में उत्पादन और परिवहन तक हर क्षेत्र के लिए ऊर्जा जरूरी है। ऐसे में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती तरीके से कैसे पूरा किया जाए। आइए अब सुनते हैं ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख प्रयासों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।
3: ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण पहलू है परमाणु ऊर्जा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में शांति एक्ट महत्वपूर्ण है। इसके जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खोला गया है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए निवेश, तकनीक और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में अब स्वदेशी परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी काम किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार नियंत्रित अभिक्रिया शुरू की। ये भारत के स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश का महत्वपूर्ण संकेत है। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम घरेलू यूरेनियम और आगे चलकर देश के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग के जरिए लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में तैयार किया गया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समुद्र में मौजूद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। हाल ही में सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम किया जाएगा। इसके तहत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जोन भी बनाए जाएंगे, यानी खोज से लेकर उत्पादन और उससे जुड़ी तकनीक तथा विनिर्माण तक एक घरेलू व्यवस्था तैयार करने की कोशिश है। इसी तरह भारत भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को केवल भविष्य के ईंधन के रूप में नहीं देखा

0: जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए परिवहन क्षेत्र में भी भारत ने कदम बढ़ाया है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक और महत्वपूर्ण आधार है सौर ऊर्जा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। वर्ष 2014 में जहां देश की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 3 गीगावाट थी, वहीं जून 2026 तक ये बढ़कर 162 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप यानी घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली पहुंचाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल क्षेत्रों में 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जाएगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए केवल बिजली उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिक मूल्य पैदा करना और आयात पर निर्भरता कम करना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत मई 2026 में सरकार ने कोल गैसिफिकेशन।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: भारत में लंबे समय तक रक्षा उपकरणों की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इस बदलाव की सबसे स्पष्ट मिसाल ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली। इस अभियान में कई स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इससे ये दिखा कि देश में विकसित रक्षा तकनीक केवल प्रयोगशाला या परीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक सैन्य परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या कदम उठाए हैं और इन प्रयासों से देश की सुरक्षा क्षमता किस तरह मजबूत हुई है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सोच के तहत भारत ने रक्षा खरीद की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। घरेलू कंपनियों से खरीद को प्राथमिकता दी गई है और कई ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिन्हें अब देश में ही बनाया जाना है। मई 2026 तक 5,521 उपकरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किए जा चुके थे, यानी जिन सामान और कलपुर्जों के लिए पहले विदेशों पर निर्भरता थी उन्हें धीरे धीरे देश में ही बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सिर्फ बड़ी रक्षा कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय इस व्यवस्था में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और निजी कंपनियों को भी जोड़ा जा रहा है। आईडेक्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को सेना की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने के अवसर दिए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक आईडेक्स के तहत 676 स्टार्टअप और नवाचार कर्ताओं की भागीदारी रही तथा 551 डिजाइन और विकास अनुबंध किए गए। रक्षा विनिर्माण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं। जुलाई 2026 तक दोनों रक्षा गलियारों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था और करीब 70,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इस पूरी प्रक्रिया का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। यानी भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए रक्षा उपकरण बनाने की दिशा में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि दूसरे देशों को भी रक्षा उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। ब्रह्मोस इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित इस मिसाइल प्रणाली ने भारत में उत्पादन और तकनीकी क्षमता के विकास के साथ एक सशक्त औद्योगिक आधार तैयार किया है। आज ब्रह्मोस भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ उसके बढ़ते रक्षा निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह आकाश मिसाइल प्रणाली, तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट प्रणाली, स्वदेशी तोपें और आधुनिक ड्रोन तथा ड्रोन रोधी प्रणालियां ये दिखाती हैं कि आत्मनिर्भरता अब केवल हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, सॉफ्टवेयर, कलपुर्जे और नई तकनीकों तक। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रोताओं, ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों की ये यात्रा एक बात स्पष्ट करती है कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता किसी एक योजना या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका संबंध देश की अपनी क्षमता विकसित करने से है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र हो, नई तकनीक हो या महत्वपूर्ण उपकरणों का देश में उत्पादन। अब आने वाले वर्षों में चुनौती ये होगी कि इन प्रयासों को और बड़े स्तर पर ले जाया जाए, नई तकनीक में निवेश बढ़े, निजी उद्योग और छोटे उद्यमों की भागीदारी बढ़े, देश में जरूरी कलपुर्जों और कच्चे माल का उत्पादन हो और हमारी आपूर्ति व्यवस्था किसी भी बाहरी संकट का सामना करने में पूरी तरह सक्षम बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकचत्वारिंशदधिकत्रयोदशसहस्रकोटिरूप्यकाणां पञ्चपरियोजनाः अनुमोदिताः, यत्र चतस्रः रेल परियोजनाः एका राजमार्ग परियोजना वर्तते। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् सर्वकारेण प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं सार्वजनिक निवेशः क्रियते, येन सततार्थिक विकासः संवृद्ध्यते। सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणात् परं परीक्षा परिष्कारे राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय केन्द्र सर्वकारस्य प्रतिवचनम् ऐच्छत्। कोलंबिया देशे भीषण भूकंपेन मृतानां संख्या 12,300 यावत् प्रवर्धिता। अपि च भारतेन प्रथम निकष स्पर्धायां श्रीलंका दलं 65,100 धावनांकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समुपविष्टेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य 1,43,13,000 करोड़ रूप्यकाणां पञ्च प्रमुख परियोजनानां अनुमोदनं कृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
0: एतासु चतस्रः रेल परियोजनाः एका च राजमार्ग परियोजना समाविष्टा अस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः असूचयत् यत् रेल विभागस्य चतस्रः बहुमार्ग परियोजनाः पश्चिमबंग ओडिशा तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 8 जनपदान् समावेक्षन्ति। एतासु खड्गपुर भद्रक चतुर्थ रेल मार्ग, भद्रक हरिदासपुर चतुर्थ रेल मार्ग, गुम्मिडी पुंडी गुटूर तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग, सहिव कटक पारादीप तृतीय चतुर्थ रेल मार्ग परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। अनेन भारतीय रेल मार्ग संजाले प्रायः 10,400 किलोमीटर परिमितस्य नूतन मार्गस्य योगः भविष्यति।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् 50,400,900 करोड़ रूप्यकाणां व्ययेन युक्ताः एताः रेल परियोजनाः 2000तमस्य 30-31 वा वर्षपर्यन्तं सम्पूर्णाः भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् मार्गक्षमतायाः वृद्ध्या यातायात गतिशीलतायां महान् परिष्कारः भविष्यति, येन भारतीय रेलवे संचालन दक्षता सहैव सेवा विश्वसनीयता सुदृढा संवर्तिष्यते। एताभिः परियोजनाभिः प्रायः 48,400 ग्रामाणां संपर्क व्यवस्था सुगमा भविष्यति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य आर्थिक विकासः सम्प्रति वैश्विक स्तरे मान्यतां प्राप्नोति, सहैव देशः 6%-8% यावत् तीव्रगत्या संवर्धते। सः अवदत् यत् विकासस्य अयम् उपक्रमः 4 प्रमुखस्तम्भेषु आधारितो वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां 26,000 उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः असूचयत् यत् निवेशः देशस्य विकास यात्रायाः महत्वपूर्णः भागः वर्तते, यत्र भारतं प्रतिवर्षं प्रायः 30 अधिकैकशत अर्बुद अमेरिकी डॉलर मितं यावत् धनं निवेशयति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् वर्धित आर्थिक गतिविधिभिः देशः सततं विकासं रक्षितुं नूतन उद्योगावसरान् स्रष्टुं अथ च विकासस्य लाभान् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं यावत् प्रापयितुं सफलो जातः। अत्रावसरे उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्रतिपादितवान् यत् भारत जापानयोः सहभागिता विकासे प्रौद्योगिक्यां समृद्धौ च आधारिता विद्यते। सः प्रोक्तवान् यत् उत्तर प्रदेशः सम्प्रति भारतस्य शीर्ष त्रिषु अर्थव्यवस्थासु अन्यतम रूपेण उद्भूतः सहैव देशस्य समग्र विकासस्य चालकश्च संवृत्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्रौद्योगिक्याः प्रसारमाध्यमस्य अर्थनीतेः अथ च लोकनीति क्षेत्राणां स्थितिः तीव्रगत्या परिवर्तते। सा एतत् तदा प्रतिपादितवती यदा भारतीय सूचना सेवायाः भारतीय सांख्यिकी सेवायाश्च प्रशिक्षु अधिकारिणः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने तया सह शिष्टाचार मेलनम् अकुर्वन्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः अधिकारिभ्यः परामृष्टवती यत् ते स्वनिर्णयेषु विवेकशीलाः, व्यवहारे करुणापराः, सत्यनिष्ठाश्च भवेयुः। राष्ट्रपतिना एतदपि प्रतिपादितं यत् तेभ्यः प्रदत्तः अधिकारः निष्पक्षतया, विनयेन, समर्पणेन च जनतायाः सेवायै एकं महत्तरम् उत्तरदायित्वं धारयति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य प्रतिपादितं यत् भविष्ये प्रश्नपत्र गोप्यता भंग निवारणाय राष्ट्रीय परीक्षा संस्थायाः संस्थागतकरणं अतीव अनिवार्यं वर्तते। न्यायालयस्य अनुसारं अस्याः कृते सुरक्षिता आधारभूत संरचना, समर्पितानि परीक्षा केन्द्राणि, सुदृढा साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत दक्षता अथ च परीक्षा संचालनाय एका स्थायी व्यवस्था आवश्यकी वर्तते। नीट यूजी 20-26 प्रश्नपत्र प्रकटन प्रसंगे याचिकानां श्रवणं कुर्वन् उच्चन्यायालयेन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालयस्य सचिवः आदिष्टः यत् सः राधाकृष्णन समित्याः संस्तुतीनां क्रियान्वयनाय स्वक्रियमाणानां चरणानां विवरण सहितं एकं शपथपत्रं न्यायालये प्रस्तुयादिति। प्रवर्तन निदेशालयेन दशसु स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। मौलाना मोहम्मद अली जौहर परिसरेण, रामपुरस्थेन मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयेन च सम्बद्धे धनशोधन प्रकरणे उत्तरप्रदेशे दिल्लीनगरे, रामपुरे, सहारनपुरे च विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तन निदेशालयेन सहसान्वेषणं प्रवर्तितम्। प्रवर्तन निदेशालयेन ज्ञापितं यत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य 2002 वर्षे प्रवर्तितस्य अधिनियमस्यान्तर्गतम् अन्वेषणं कृतमिति। इदम् अन्वेषणं स्वायत्त करदातृभिः माध्यमैः सर्वकारीय अनुबन्धनीतेः कथित विचलनस्य, ततः प्राप्तस्य धनस्य विश्वविद्यालयस्य अथवा परिसरस्य कृते सम्पत्तिनिर्माणे कथित उपयोगस्य च विषये वर्तते। लखनऊ नगरे स्थितः

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे. उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100. एनी अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्लोजिंग ऑक्शन सेशन विल बी डेल्ट विद स्टर्नली, says SEBI's chairman Tohin Kanta Pandey. In global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया. सेबी के अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया. निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% नीचे आ गया. लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई. वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ. पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ. इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा बिकवाली देखी गई.
0: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the

0: sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced, and 231 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ। उद्यान एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी 7वें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है, और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपके ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर तो रिलीफ मिली, तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास। और जब ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे जैसे वो MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहाँ पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ज़बरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज़्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी, आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स है उस पर आप देख सकते हैं या असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज़ है, लार्जर जो फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल कंपनीज के बैलेंस शीट्स और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो रेजिलियंस शोर कर रहे हैं, मतलब इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर एक जो ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, वो उनको उस हद तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके कच्चे तेल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, वो इतना ऐसी एक मूलभूत चीज़ है, वहाँ पे आपने असर किया तो पूरे आपकी इकोनॉमी में, उसके बाद वो क्योंकि स्टॉक मार्केट को लीड इंडिकेटर बताया जाता है, वो आगे का एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे चल के क्या होगा। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं कि आगे चल के स्टॉक मार्केट्स को लगता है कि इम्पैक्ट होगा। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता, कई बार सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होता है, पर कई महीने हो गए हैं और आप इसमें आप मार्केट सेंटिमेंट को आप निगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना फंडामेंटल मूलभूत चीज है।
0: निफ्टी एट 24,000 उद्यन, इट्स बीन अ स्टिकी नोट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी लुक बैक इवन 2 years बैक, इट वाज हॉवरिंग समवेयर अराउंड 24,000 इटसेल्फ। अगेन वी आर वेल इनटू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 26-27 फिस्कल नाउ, एंड येट हॉवरिंग अराउंड 24,000। ऑफ कोर्स वी हैव द फैक्टर्स व्हिच इज kind of driving it or not driving it. Having said that, then we saw the first quarter results has been being quite promising. If we look at the results in face of the turmoil or the uncertainties we have witnessed over the past 6 months, especially with the Middle East crisis, as you say. Now, can we say that the Middle East crisis has kind of out

0: outweighed the good results or the more than satisfactory results we saw in the Q1 FY 26-27?
1: It's not bad at all. I mean, if you see the numbers. But, you know, Nishit, the challenge is what the market is concerned about is how things are going to pan out in the future. So what typically, if you're investing in something today, you're spending some money. Let's use the word investing money in buying equities or directly stock. You're buying some stocks or you're buying units of a mutual fund or whatever market-linked product. You're buying some units. It could be anything. I mean, it could be buying units in an NPS, National Pension System. Now, what basically an investor, I mean, market sentiment is that if you are investing, do most of the people think, when do they think the investment will bear a return? And can they see that return happening? Now, if you look at it in a very simplified supply and demand, then, you know, when you think that you will, there are two fundamental things. One is, what is the risk of that value going down or staying where it is, whatever. That's one, which is happening to the principal. And will that money grow or not? These are just the two questions. So if I were to be addressing the listeners of this program, whenever we are analyzing all this, there's so many commentaries that happen. You just need to look at these two things. Now, if the markets are hovering at a particular place and they're not going up, then these two things are at work. So you'll be able to explain almost 70-80% of what's going on by just focusing on these two things. So what's happening is, it's not happening to the satisfaction of most of the participants of the markets, most of the holders of the shares. It could be institutional people might be moving it, which typically tends to be the case. Domestic and foreign players, they tend to move the markets. But there are also Indian investors who are investing through our domestic mutual funds and other institutions. So those things, their sentiments are also important. So the other way of looking at it, a more positive spin, if I'm allowed to give, is that Indian investors continue to be okay with how things are with India. Otherwise, it would have really declined in a very, very big way. And mind you, the things that are making markets move up are all these AI-based companies who are producing the AI IP or the chip. Now, we don't really, really have those kind of players in our country. So we will have a player who will be doing data centers and stuff like that, but not the frontline things which are moving markets elsewhere, say in South Korea or Japan or US. So the fact, it is actually the other way of looking at it, is that it is reflecting resilience. Now, that doesn't help. It's a high risk investment. And these are what the vagaries are. So therefore, another lesson is that you, obviously, people talk about asset allocation, that you need to be in equities, gold and debt. That mix you're getting back to the textbook. And how do you do it for a retail investor, for people like you and me? You can look at multi-asset allocation funds. And if you look at how they've been doing it every time period, 6 months, one year, 3 years, 2 years, you'll find them doing much better than even index funds.
0: All right.
1: So those things are coming back and they are actually showing. And typically, and during these periods, you get to know also which fund manager, which fund house, which scheme does well. So it's not about how you do well when the markets are doing well. It's also when the market downturn happens, men and the boys get separated.
0: All right. Very interesting point you make, Udayan, of the domestic investors. But let's talk of the foreign portfolio investors and the foreign institutional investors. After a long, long time, let's say after almost 6 months or even 8 months now, there have been a positive inflow from the FPIs and FIIs. And that is quite positive, of course, not manifesting into what we are seeing in the Indian markets. But as well, if we see the primary market as well, not getting quite buoyed up, rather being very tepid, you say.
1: Yeah, It's not such a bad thing, Nishit, you know, because there have been these complaints that, you know, you bring an IPO and it's exorbitantly priced. You know, you need to keep something in the on the table for the smaller investors or the other investors, that these episodes are of founders and other large investors who had invested in initially of making money. That's a fair game. But in these kind of circumstances, maybe one good thing is IPOs is happening. If things were bad, IPOs wouldn't have happened. So again, I'm coming back to the resilience. If market people were not feeling excited about it, they wouldn't have come with the IPO. They would have postponed it. So those periods we have also seen. So that one thing is that it's looking okay. These people are coming in, but the pricing, I would argue, is likely to be much better. You won't find analysts complaining that it's it's unfairly priced or whatever, and those things are going to happen, and you will also have a pipeline of these things, these kind of companies coming in.
2: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने कहा है कि हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS में किसी भी तरह की हेराफेरी और इसे बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सेबी के लिए अधिक आसान है। उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों, खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक CAS में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: देखिए, बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज या दूसरे एक्सचेंज उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं। तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है। चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशंस है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें। और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। ये उन लाइन में है जो इसे टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीथिंग प्रॉब्लम है। पार्टिसिपेशन का इशू है, जब जैसे पैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पर नज़र दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज़्यादा हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ज़्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है, वनस्पति इसके की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है। तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक हैं वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीज़ों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
2: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है, जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहाँ पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
1: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें ताकि

0: पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
1: आगे बढ़ते हैं। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों से अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.1% नीचे था और लंदन का फुटसी 100 बिना किसी खास बदलाव के कारोबार कर रहा था। आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले महीने बढ़कर 2.9% होगा, जो जून में 2.6% था। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में कोर महंगाई दर 2.9% रही, जो पिछले महीने के ही समान है। इस बीच इनपुट प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स पिछले महीने 4.9% बढ़ा, जो जून में 7.4% था। उद्यन आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, वहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है। कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ईटीएफ को स्ट्रक्चर किया, तो वो वहाँ का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं। और ये जब एआई रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी। अब जब जैसे ही वहाँ पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया, पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है। वहाँ पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज़्यादा शेल्बी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एआई रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पे असर ज़्यादा देख रहे हैं, स्पेशली हाइनिक्स में।
2: And moving on to the US markets, major US indices ended lower yesterday, led by a sell-off in semiconductor stocks. Investors remained cautious as continued tensions in West Asia pushed bond yields to multiple year highs. The Nasdaq Composite Index declined 1.3%, the S&P 500 dipped 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average fell 0.2%. Market participants will closely watch the minutes at the Federal Reserve's July meeting, due later tonight, for further insights into policymakers' views on inflation, interest rates, and the broader economic outlook. But then, of course, the West Asian crisis hangs heavy on the U.S. markets as well, as we see the markets dipping. The semiconductor stock sell-off is quite surprising. That is one. And of course, your take on the Fed's meeting, the outcomes of it, would it be dovish, hawkish, or remains the same?
0: So Nishit, the change that has happened with the new Fed chair is that he doesn't want to give guidance. Now what's happening is suddenly that information, what the Fed thinks, where things will go, which was guiding the market all through, it's like a parent holding you by the hand and showing you, acting like a compass. Now suddenly that hand is gone, that information source, that perspective, the markets are not getting. So they will be looking, they'll be scanning through all the minutes that is coming out and try to make a determination how Fed is going to respond. Because the price situation in the US is not exactly in the zone that the Fed will like. Now what is Fed going to do about it? So that is the question people are going to try. They'll try to extract from the minutes and any other utterance which the respective Fed governors do. So that would be a very, very key part. Second is I think you mentioned about these semiconductor stocks, etc. Now there are these periods, and recent days has been one of those periods when it so happens that the prevailing mood or prevailing sentiment is that people think that AI play is being overdone, maybe with government borrowing so much of money.

0: money and you see the what happens is there's a think of a pool of funds where everybody has to borrow. If government is going to borrow more, where will the AI guys go and borrow? So because these are very large sums, mm-hmm. and where would other people borrow? Which means that if there's going to be pressure on borrowable funds, that means the price of those borrowable funds will go up. So that's why you're finding these yields going up. So right. Those are things that are influencing even the equity markets.
1: Right. And U.S. President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media posts, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
2: उद्यन हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोई थार नजर नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
0: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का सप्लाई वहीं से निकलता है. और हमारे लिए हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं. तो उनको वहाँ से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीज़ों में असर पड़ जाता है. दूसरा है जो तेल वहाँ से आ रहा है उसमें का भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टरप्ट हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये ज़रूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो ज़रूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
2: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
1: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey.

0: and global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4-लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, today approved five projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, four multi-tracking projects of railways will cover eight districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The minister said the government has also approved the upgradation of the Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa section of National Highway 22 to four-lane standard in Bihar.
3: Five major decisions have been taken. The first four projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first four railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The fifth project is the construction of a four-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
1: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnav was addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive exams. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address. President Draupadi Murmu today advised public servants to use social media platforms not only to inform and engage citizens, but also to listen to their concerns, understand them and respond appropriately. She stressed that when information travels rapidly, accuracy, credibility and public interest must always guide official communication. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at the Rashtrapati Bhavan. A court in West Bengal's Nodia district has ordered the issuance of an arrest warrant against Trinamool Congress MP Mahua Moitra for failing to appear before it in an alleged hate speech case. The Krishnanagar court also directed that a report on the execution of the warrant be submitted by 28th of August. The case against Moitra alleges that she insulted women and made the hate speech. The court had earlier issued precognizant summonses to her in the matter. U.S. Ambassador to India Sergio Gaur today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve the security. Mr. Gaur is on his maiden visit to the Union Territory, where he called on Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. He described the meeting with the Chief Minister as positive and said that both the sides have identified key follow-ups to be taken forward in the future. Iran's Armed Forces Chief of Staff, Major General Ali Abdullahi, has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. The Armed Forces Chief said Tehran is closely monitoring

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है, और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
3: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवे को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की हैं, कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस को 4th लाइन 3rd लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा यह है कि इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो यह है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है, और साथ ही साथ कई सारी इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
2: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है, तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
3: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है, और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे, और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट की तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वह सीमेंट के हों और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी हुई है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में, तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा।
2: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमिड्डी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और

0: आज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल जो भी उनकी चीज है वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात या आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद वहां पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहां चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते रूट कम करें, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
0: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी, तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे?
1: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बड़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
0: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और श्रोताओं आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
1: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहाँ की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचाया जाए, मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुमेडपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई, विजयवाड़ा, रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे 2-3 टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकैट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सेंचुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दौर की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदरूनी इंटरनल टूरिज्म मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो निश्चित तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।
0: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है? अब
1: पिछले 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे, और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है।

0: अगर एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हुई है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पे, जैसे मैंने कहा आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी, एक मालगाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे, अगर आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
1: श्रोताओ, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
0: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है उसके लिए है, और तीसरा ये है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है जैसे अभी रेलवे में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है, करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
1: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेस वे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है, लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
0: इसमें 2 पहलू है, एक तो आपने यहाँ गति जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे अब दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था ये तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ, तो और भी जिस सारे क्षेत्र हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते हैं, जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है, कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा, बहुत कम शब्दों में?
0: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री में सामान तो पड़ा है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे जिसे कहते हैं मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साधना साथ तो लिया पहुंचना कठिन होगा।
1: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज

0: ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
1: सुर्खियों में

और आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ आपका जो जुड़ाव है, जो एक प्यारा सा रिश्ता है, सालों से जो चला आ रहा है, इस पर भी किसी का जोर कभी चल ही नहीं पाएगा। ये यूं ही चलता रहेगा। तभी तो आपने हमेशा की तरह ट्यून किया हुआ है FM 100.1 MHz, जहां मैं अभिनीत शुक्ला आपका करता हूं सुरीला स्वागत हमारे कार्यक्रम सांझ ढले के साथ। नमस्कार। पहला गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में था, हसरत जयपुरी का लिखे इसमें बोल थे और शंकर जयकिशन के संगीत से ये सजा हुआ था। विश्वजीत और सायरा बानो की मुख्य भूमिका वाली फिल्म अप्रैल फूल से ये गीत आपने सुना, जिसमें पहले नायक की भूमिका निभानी थी शम्मी कपूर को, लेकिन किसी कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हाँ, इसके गीतों में आपको उनकी झलक साफ दिखाई देगी। अगला गीत उस फिल्म से जिसमें चिन पटाक दम दम बोला गया। किन्होंने बोला? किशोर कुमार ने। जी हाँ, और जो कि कई साल बाद या तो कहें हमारे अभी जो हम बात कर रहे हैं उससे कुछ साल पहले थोड़े बदलाव के साथ एक कार्टून में थोड़ा सा बोला गया और वो खूब वायरल हुआ। आप जानते ही हैं क्या बोला गया। तो फिल्म का नाम है लड़का लड़की, आवाज किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार मदन मोहन।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये गीत था फिल्म जहरीला इंसान से, जो कि ऋषि कपूर की दूसरी फिल्म थी और इससे दो साल पहले रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म नागरा हावू की थी ये रीमेक। दोनों के निर्देशक एक ही थे, एसपी पुत्तन कानगर। इस गीत के शब्द लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों में पिरोया आरडी बर्मन ने, आवाज आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की। साथियों, वापस लौटेंगे बहुत ही जल्द एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

और साथियों, आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत सन 1956 में आई चोरी चोरी से होगा, जिसमें ये और इसके अलावा एक और गाने पंछी बनी उड़ती फिरूं को टेक्निकलर में फिल्माया गया था और रिलीज भी किया गया। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर ने और मन्ना डे ने, बोल शैलेंद्र के, और इसकी धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

हम आपके 24 घंटे सातों दिनों के साथी हैं। नाम है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और हम भी कुछ ऐसे ही आपके साथ साथ चलते रहते हैं और आप हमारे साथ। हाँ, सांझ ढले कार्यक्रम को आज के लिए यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। आगे सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ, 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलेंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया, इसके अंतर्गत प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गईं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा और राजघाट डिपो पर एक पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: इन बस सेवाओं के माध्यम से नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, ITO, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षणिक और संस्थागत केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली से हरियाणा के प्रमुख शहरों को स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग पर 5 इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें संचालित होंगी और दोनों दिशाओं में प्रतिदिन कुल 10-10 यात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण ऐसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र तैयार करना है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को यह लेडीज स्पेशल बस सेवा एक विशेष उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास बसें शुरू की गई हैं, जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4: 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज काम कर रही है।
2: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
5: जो लोग दिन में 2 बार एक ही बार बना खाना खाते हैं उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
2: श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
6: नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में के राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दो लोगों पर हमला किया था। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। ये कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
7: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा DSS कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में CCTV कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक CNG पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ, 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया, प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के साथ ही उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें।
2: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द वे सिटीजंस रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द एंगेज बट ऑल्सो टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स ऑफ द पीपल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हों। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे देश भर के पात्र युवाओं को इस अनूठे युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में पंजीकरण करने और भाग लेने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। इससे पहले युवा संगम चरण 7 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं। 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पूल डी का मैच जारी है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन से ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 5-3 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अच्छी बात यह है कि आप और हम प्यार छुपाने की बुरी आदत से कोसों दूर हैं। हाँ, जताने में कोई दिक्कत नहीं है और आपका संगीत के प्रति प्रेम भी जग जाहिर है। तो FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू हो चुका है रागों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम मधुरिमा, जहां मैं अभिनीत शुक्ला करता हूं आपका फिर से स्वागत। अब ये गीत सुनकर आप में से अधिकांश साथियों को ये समझ में आ ही गया होगा कि आज बात चलेगी खमाज थाट से उत्पन्न हुए एक चंचल प्रकृति के राग की, जिसका नाम है राग देश। इस पर आधारित पहला गीत था नीला आकाश फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ, राजा मेहंदी अली खान द्वारा लिखा और मदन मोहन के संगीत से सजा हुआ। आगे बढ़ते हुए फिल्म अनुभव से मन्ना डे की आवाज में ये गीत, शब्द रचना कपिल कुमार की, धुन बनाई कानू रॉय ने।

इतने मधुर राग को सर कोकिला लता मंगेशकर का साथ मिल जाए तो रूठ जाना असंभव ही हो जाता है। फिल्म आरजू से ये गीत था, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। साथियों, राग देश की जाति और असंपूर्ण है। वाद्य स्वर ऋषभ यानी कि रे और संवादी पंचम मतलब पा माना जाता है। इसके आरोह में आते हैं सारे मापा निसा और अवरोह में सा नि धापा मागा रे गानिसा। तो अब आइए सुनते हैं राग देश पर ही फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आर डी बर्मन का।

इस खूबसूरत गीत के बाद चलिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत सुन लेते हैं, जो कि राग देश पर ही आधारित है। फिल्म अनारकली से हेमंत कुमार का गाया हुआ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार चितलकर रामचंद्र।

और हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि प्रोग्राम के 20 मिनट का समय पूरा हो रहा है। आशा करते हैं राग देश पर आधारित ये मधुरिमा आपको पसंद आया होगा। अभिनीत शुक्ला को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं जया भारती और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, जहां हम आज बात करेंगे क्रिकेट की पिच की, बैडमिंटन कोर्ट से आ रही अपडेट की और हॉकी के मैदान से लेकर शतरंज की बिसात पर चली आ रही उन सभी शातिर चालों तक हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। हाँ, फुटबॉल के दीवानों के लिए डूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी और पुरस्कारों को लेकर भी अरे एक बड़ी घोषणा है, तो हम सब पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खेल खबरों पर। FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत की पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में। भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया। और एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीता।

0: तो शुरुआत करते हैं हमारी देश की राष्ट्रीय शान हॉकी से। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप चल रहा है और वहां पूल डी के मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं। पूरे मैच का हाल जानने के लिए पहले सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारतीय टीम आज विश्व कप के अपने तीसरे पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान के सामने उतरी। मैच की शुरुआत से ही भारत ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। मैच की पहली सफलता भारत को कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में दिलाई। इसके बाद 11वें मिनट में अभिषेक नैन ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले क्वार्टर तक भारत के पास 2-0 की बढ़त बरकरार रही। दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही हरमनप्रीत ने एक बार फिर फ्रंट से लीड करते हुए अपना दूसरा और टीम के लिए तीसरा गोल किया। जवाब में मैच के 22वें मिनट में पाकिस्तान के शाहिद हनन ने गोल कर अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा, लेकिन अभिषेक नैन ने अगले ही मिनट गोल किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले पाकिस्तान ने वापसी करने की कोशिश की और सुफियान खान ने एक गोल दागा। दूसरे क्वार्टर तक भारत 4-2 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत की बढ़त मजबूत की। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में कोई और गोल नहीं हो सका। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में पाकिस्तान ने आक्रामक खेल दिखाया। 46वें मिनट में पाकिस्तान को एक और सफलता हाथ लगी। इसके बाद पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम रही और भारत ने ये मैच 5-3 से अपने नाम कर लिया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया। और इसी हार के साथ पाकिस्तान की तो अगर हम बात ना करें, भारत की बात करें, तो उसने नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है। और अब हम चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट में। नई दिल्ली में चल रही है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और वहाँ से हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। भानु, जिस तरह का आज खेल देखने को मिला है, भारतीय प्रशंसकों के लिए निराशाजनक खबरें भी रही हैं और हमारी भारतीय शटलर्स ने कुछ उम्मीदें भी बरकरार रखी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमेरिका के गैरेट वेन से हार कर लक्ष्य सेन को बाहर होना पड़ा, भारतीय प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो कोर्ट पर मौजूद दर्शकों और कोचिंग स्टाफ का जो इस अप्रत्याशित हार पर क्या रिएक्शन आए हैं?
2: जी, उनकी हार पर बहुत ही ज्यादा शॉक थे सारे फैंस। उनकी हार का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह हार जाएंगे। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, उसके बाद बहुत ही होपफुल थे सारे फैंस कि वो मैच जीतेंगे, लेकिन दूसरे 2 गेम्स में उनके अपोनेंट ने कमबैक किया और जीत हासिल करी। और लक्ष्य सेन बीच में थोड़े से चोटिल भी नजर आए थे और मैच के अंत तक भी उनके उन्हें चोट मिल गई थी, और जैसे जिस तरह वे हारे उससे सभी बहुत ज्यादा शॉक थे।
0: बिल्कुल, तो इस पूरे चैंपियनशिप में भले ही हार का सामना करना पड़ा है लक्ष्य सेन को, उन्नति हुडा भी हार कर बाहर हो गई हैं, लेकिन कुछ उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं भारतीय प्रशंसकों के लिए। आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में

0: जी से होगा। और पीवी सिंधु का, जैसा कि सभी आप जानते होंगे कि पीवी सिंधु का चाइनीज प्लेयर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने आज तक कोई भी चाइनीज प्लेयर आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में नहीं हरा पाया है। उसी बीच अगर आयुष शेट्टी की बात करें तो आयुष शेट्टी ने पहले राउंड में शी यू ची को हराया था, और शी यू ची को हराने के बाद वे बहुत ही ज्यादा अच्छे कंट्रोल में दिखाई दिए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा और उम्मीद है कि वे अच्छा खेलेंगे।
1: जी, आयुष ने श्रीलंका के दुमिंदु अभिविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराया है, जबकि पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू जांग को 21-16, 21-17 से हराया, जबकि ध्रुव और तनिषा ने मकाऊ के लियोन लोक चोंग और एनजी वेंगची पर सीधे गेम में 21-11, 21-11 से आसान जीत दर्ज की है। और जहां बात कर रहे थे सात्विक और चिराग की जोड़ी को की, तो उन्होंने स्कॉटलैंड के एडम प्रिंगल और एलेक्स डन के चोटिल होने से उन्हें बाय मिल गई है। तो भानु, जिस तरह से इन्हें बाय मिला है, या फिर हम कहें कि इस तरह से सात्विक चिराग की जोड़ी को एक ब्रेक मिला है, तो क्या अगले राउंड में इसका फायदा देखने को मिल सकता है?
0: जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, और जितना आपको रेस्ट मिलता है खेल के बीच, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। कुछ मैचेस आपके कई समय ऐसा होता है कि आपके मैचेस लेट खत्म होते हैं और अगले दिन वे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को ये जो ब्रेक मिला है, ये उनके बहुत ही काम आएगा। अब वे जब अपना अगला मैच खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रेपरेशन अच्छी रहेगी।
1: जी, तो आज के मैच के बाद, जैसा कि हमने बताया अभी कि मिलीजुली उम्मीदों वाला रहा है आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए या फिर भारतीय प्रशंसकों के लिए, तो आज के मैच के बाद स्टेडियम में भारतीय खेमे में कैसा माहौल देखने को मिला, या फिर भारतीय खेमे में कैसा मनोबल देखने को मिला, और कल के मुकाबलों से भारत को कितनी उम्मीदें हैं?
0: कल के मुकाबलों से बहुत ही उम्मीदें हैं भारत को, और आज लक्ष्य सेन का, जैसा कि मैंने बताया कि वे पहला गेम जब जीते और दूसरे गेम में और तीसरे गेम में जब वे हार रहे थे, तब उनका क्राउड ने बहुत ही सपोर्ट किया, और उसके बाद जब आगे के मैचेस हुए जो पीवी आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु के, उसमें भी क्राउड ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, और क्राउड जो हमारे दर्शक है वो बहुत ही उम्मीदवार मतलब होपफुल है, उन्हें बहुत उम्मीद है कि कल उनके शटलर्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वांग जी के खिलाफ सिंधु का अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी वांग जी को हराया था, तो उम्मीद है कि वह कल भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया भानु कोर्ट से इन तमाम ताजा अपडेट्स के लिए। तो श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता भानु प्रताप सिंह सीधे बैडमिंटन कोर्ट से। तो अब चलते हैं क्रिकेट के पिच की तरफ और बात करते हैं गोल में, जो दो टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का मैच चल रहा है, तो भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है, और भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई, और इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है।
2: मिल गई जीत, जीत गई है टेस्ट मैच भारत यहाँ गोल में, और अब 1-0 की बढ़त है यहाँ टीम इंडिया के पास इस श्रृंखला में।
3: मानव सुथार की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका को पांचवे दिन दूसरे सेशन में 206 रन पर समेट कर गोल टेस्ट अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को चौथी पारी में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, उन्होंने अपने शुरुआती 4 विकेट मात्र 47 रन पर ही गंवा दिए। हालांकि कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने 59 और सोनल दिनुषा ने 84 रन बनाकर पारी को जरूर संभाला, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के साथ ही श्रीलंका की पारी 78वें ओवर में 206 रन पर सिमट गई और टीम 165 रन के बड़े अंतर से मैच गंवा बैठी। भारत के लिए दूसरी पारी के हीरो युवा गेंदबाज मानव सुथार रहे। सुथार ने केवल 55 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पाडिक्कल के 167, केएल राहुल के 82 और ध्रुव जुरेल के 51 रनों की मदद से 462 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में सोनल दिनुषा के शतक और निरोशन डिकवेला की 80 रन की पारी के बावजूद 284 रन पर सिमट गई थी और उस समय तक 178 रन से पीछे थी। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 66 रन का योगदान दिया। तब 178 रन की बढ़त के आधार पर भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए कुल 372 रन का लक्ष्य दिया। सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो पूरा का पूरा मैच काफी अच्छा रहा और स्टूडियो में इस वक्त अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला जुड़ चुके हैं। विशेष, जिस तरह से दूसरी पारी में मानस उथार की जादुई गेंद

0: बाजी देखने को मिली। मानो सुधार ने जिस तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, उसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया।
1: जी बिल्कुल जया, मानव सुथार ने शुरुआत से ही अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध कर रखा और उसी का नतीजा हमें देखने को मिला कि श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले मानव सुथार ने पहली पारी में भी 4 विकेट चटकाए थे, तो उनका 10 विकेट हॉल कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ वो सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं 10 विकेट हॉल लेने वाले। 24 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी अचीव कर लिए हैं। हरभजन सिंह को पछाड़ा है उन्होंने पीछे, जिन्होंने 2008 में 10 विकेट लिए थे 153 रन देकर श्रीलंका की सरजमी पर।
0: हालांकि मैच जीत गई है भारतीय टीम दूसरी पारी में, लेकिन अगर देखा जाए तो इस जीत की नींव पहली ही पारी में रख दी गई थी जब देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन और केएल राहुल ने 82 जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया था।
1: जी बिल्कुल जयक, और देवदत्त पडिक्कल का शतक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आया और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। खास बात यह है कि भारतीय टीम लगातार 3 नंबर के बल्लेबाज के लिए संघर्ष कर रही थी। 19 पारियों में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद उनको कोई भी शतकवीर बल्लेबाज नहीं मिला था, जिसमें देवदत्त पडिक्कल आए और उन्होंने 167 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी पारी में भी 44 रनों का योगदान दिया 75 गेंदों पर, तो एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जिसके चलते उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो नींव बिल्कुल उन्होंने पहली पारी में ही रख दी थी।
0: इस जीत के साथ अगर हम देखें तो WTC पॉइंट टेबल पर अब भारत की क्या स्थिति नजर आ रही है?
1: जी बिल्कुल, फायदा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भारत को। अब भारत की जीत का प्रतिशत जो है वो 53.33 हो चुका है। इस जीत के साथ WTC फाइनल में जो भारत की उम्मीदें हैं उसको भी जिंदा रखा है टीम ने। और हालांकि पोजीशन में भारत की कोई बदलाव नहीं हुआ है और श्रीलंका जो है वो अब 33.33% पर रह गया है और 6वें नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर बनी हुई है।
0: बिल्कुल, तो 23 अगस्त को अब कोलंबो में शुरू होने वाला है दूसरा टेस्ट मैच और सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त से आगे है। तो बिल्कुल श्रीलंका निश्चित रूप से वापसी करने की कोशिश करेगी, तो देखते हैं कि आने वाला मुकाबला कितना रोमांचक होता है। अब रुख करते हैं शतरंज चैंपियनशिप की, जहां एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भारत के विवान विशाल ने ओपन वर्ग का खिताब जीत लिया है, जबकि बालिका वर्ग में प्रतीति बोर्दोलोई ने रजत और प्रशीता गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है।
2: ओपन वर्ग में खिताब के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शीर्ष क्रम पर चल रहे कजाकिस्तान के अखिल बे इमांगली और भारत के माधवेंद्र प्रताप शर्मा को अंतिम दौर की बाजियों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे खिताब की दौड़ रोमांचक हो गई। इसी का फायदा उठाते हुए विवान ने अंतिम 3 दौर में लगातार 3 जीत दर्ज की और 7 दौर में 6 अंक प्राप्त करके ओपन रैपिड खिताब हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अक्षय बोरगांवकर और अपूर्व कांबले ने भी 5-5 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि बेहतर टाई ब्रेक स्कोर कारण अक्षय ने रजत पदक जीता, जबकि अपूर्व को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बालिका रैपिड वर्ग का खिताब तुर्कमेनिस्तान की शोहरा दुआ लाला ने जीता। प्रतीति बोरदोलाई ने रजत पदक जीता, जबकि भारत की ही प्रशीता गुप्ता ने कांस्य पदक प्राप्त किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात डूरंड कप की, जहां डूरंड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 11 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रतिभाशाली खिलाड़ी का सम्मान और 1,00,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आयोजकों ने सभी 6 ग्रुप से खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इसमें 11 युवा खिलाड़ियों के नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन भारतीय खेलों के लिए मुकम्मल और यादगार दिन साबित हुआ। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर

0: में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजन्स रिसीव शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन. यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द

0: Engage, but also to listen, understand, and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत

0: एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. U.S. Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Center and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared four multi-tracking projects of railways covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
5: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं.
6: फाइव मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन. द फर्स्ट फोर प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द फिफ्थ इज द हाईवे प्रोजेक्ट. द फर्स्ट फोर रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन. द फिफ्थ प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा. दीज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे.
5: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
4: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to four-lane standard.
5: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए.
6: द प्रोजेक्ट इज बिकमिंग अ मेजर लाइफलाइन फॉर द एंटायर बिहार. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोनबरसा ऑन द नेपाल बॉर्डर एंड पासेस थ्रू सीतामढ़ी एंड मुजफ्फरपुर. इट विल क्रिएट अ कंप्लीट ट्रांसपोर्ट आर्टरी व्हिच विल बेनिफिट बिहार फॉर मेनी इयर्स. इट इज एन 83 किलोमीटर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अंडर व्हिच द एग्जिस्टिंग रोड विल बी अपग्रेडेड इनटू अ फोर लेन हाईवे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,591
5: करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो.
4: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor.
7: We need fixed policy for the different type of tunnels, bridges and road projects, which is a permanent policy for technical and financial qualification is very, very important. Other important thing is we are very much interested in the government about financial audit. But now after 12 years of my experience in this ministry, I am coming to conclusion that the performance audit is more important than financial audit. If you have contractorship, you don't have to earn money. But the quality of construction is good.
4: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said the government aims to triple the country's air cargo volume by 2030. Mr. Naidu was speaking at the inauguration of new sectors under the Transcargo Security Hold Area to enhance air cargo connectivity from Delhi Airport today.
8: India is strategically located in such an advantageous place that we are rightly placed to become the cargo hub of the whole world. We have started hub and spoke operations where we are bringing in people from across the country, different airports, doing immigration there, connecting them through Delhi. Now, since we have opened up on the air cargo network also, we approximate that 3.5 million metric tons air cargo that we have in the country today. Our target is by 2030, we want to triple it by almost 10 million metric tons.
4: Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive examinations. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address to create a free online coaching ecosystem to support students. U.S. Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar.
9: This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, and we look forward to building this relationship forward. New Delhi, the Chief Minister here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is recommended by the United States should be downgraded.
4: Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. President Draupadi Murmu has called for accurate, credible and citizen-centric government communication in the social media era. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at Rashtrapati Bhavan. She said the rapidly changing landscape of technology, media, economics and public policy requires public servants to continuously upgrade their knowledge and skills.
10: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people. In today's data-driven world, the quality of public policy depends greatly on the availability of accurate, timely and credible evidence.
4: The Supreme Court today stressed the need to institutionalize the NTA with secure infrastructure and robust systems to prevent future paper leaks. While hearing pleas concerning the NEET UG 2026 paper leak, the court directed the Secretary for the Union Ministry of Education to file an affidavit setting out the steps being taken to implement the Radhakrishnan Committee's recommendations. Hearing another case, the Apex Court today sought responses from the Centre and the National Commission for Protection of Child Rights on a PIL seeking the establishment of a national DNA and biometric identification system for missing and rescued children to facilitate scientific identification, tracing and reunification with their families. In Jharkhand, the 26-day-long student agitation over irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations has been called off following the state government's decision to cancel several recruitment exams and order investigations into the issue. However, the government's decision has triggered protests by candidates who were already appointed through the cancelled examinations. More from our correspondent.
11: The state government issued notifications cancelling 22 examinations and ordering investigations into irregularities in 45 examinations, including JPSC Civil Services and JSSC CGL. The students have given the government 60 days to conduct the investigations, warning that they will resume their agitation if the probe is found to be unfair or inadequate. Meanwhile, the government's decision has affected the appointments of 2,628 candidates, prompting selected JSSC CGL employees to stage protests at the Jharkhand Secretariat and Project Bhavan, raising concerns over their jobs in future. The protesting employees said they had cleared the examination through the prescribed process and argued that if irregularities occurred, action should be taken against those responsible rather than cancelling the careers of candidates who were selected and appointed. Mavish Rahman, Akashwani News, Rajasthan.
4: Union Minister Kiran Rijiju has termed as false the claim that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
3: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए। तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन, दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापिस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
2: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
4: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी कहें या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती? सकती हैं इसके जरिए?
3: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है, साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा, उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनको उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन

0: स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है। युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो। बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती है क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए। और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
3: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम्प करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन ने बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था FM का भी था, कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करना है कि जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसा अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं, इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं?

0: जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं।
1: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा की नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपी के हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलोअप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलोअप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादातर तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
0: जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है, वो तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
0: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
2: पाएगा। भाई सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी इवन गवर्नमेंट में भी और काफी अवेयरनेस है और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस इवन आरबीआई का भी आपने देखा आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में और इवन डिजिटली तो क्योंकि आपके पास है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

0: है यूपीए बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। अभी हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट, कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह का अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितना भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही है, तो कोलैबोरेशंस मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि आईटी और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो

0: अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए, हाई पावर कमेटी के लिए कैसा मटेरियल बनेगा, और जैसे श्री सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो अब वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए, दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है, कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल, 118 साल, कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके हम बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्री जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, बैंक्स के कई बैंक्स ने टाई अप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूनिट प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली, तो ये है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट

0: पे कस्टमर कम होते जा रहे हैं बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, पीपीएफ वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी है, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2027 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है, तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विन जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए, तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
5: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
4: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना

0: विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमेरिकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। और खेलों में भारत ने गोल में दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन का से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानस उथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31. The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations and strengthen the transport of key commodities including coal, iron ore, cement, steel, containers, automobiles and food grains. Mr. Vaishnav informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbursa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
2: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए
3: द प्रोजेक्ट इज बिकमिंग अ मेजर लाइफ लाइन फॉर

0: पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
2: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और भारत अमरीका संबंधों और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहां अमरीकी सरोकार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ सकते हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के सेना प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तटों पर स्थित देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है।
3: सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन ठिकानों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह चेतावनी वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को लेकर अमेरिका और ईरान के विरोधाभासी बयानों के बीच आई है। 60 दिनों के समझौता ज्ञापन से कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका, जिससे राजनयिक प्रयास और भी जटिल हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने दावा किया कि ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने में विफल रहने के बाद अमेरिका अब वार्ता की संभावना तलाश रहा है। परस्पर विरोधी दावों ने कूटनीति की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
2: कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हो गए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि लगभग 277 इमारतें ढह गई हैं, जबकि लगभग 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तलाश और बचाव दल मलबे के नीचे फंसे या लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभियान चला रहे हैं। कोलंबिया राष्ट्रपति अबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इससे सरकार को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष उपाय करने की अनुमति मिल गई है। इस बीच कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में 220 टन से अधिक मानवीय सहायता सामग्री पहुंच चुकी है। इसके अलावा आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए 144 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। भारत ने भी कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन के सिंगापुर दौरे पर हैं। ये दौरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक ISMR के तहत दोनों देशों के बीच जारी उच्च स्तरीय संवाद का हिस्सा है। श्री गोयल के साथ विभिन्न क्षेत्रों के करीब 70 वरिष्ठ उद्योगपतियों का भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करना है। एक रिपोर्ट।
4: श्री गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक में श्री गोयल के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। श्री गोयल सिंगापुर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री गोयल सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से इस्ताना में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ सरकार और उद्योग के बीच सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर भारत सिंगापुर चौथी मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। ये बैठक कल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
5: इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये बैठक द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा

0: सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। विश्व दर्पण के लिए मनोज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नीदरलैंड्स के अम्स्टल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की मजबूत पकड़ बना ली। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर ऑल आउट हो गई। मानव सुधार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने आज कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को व्यापक चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में स्थानांतरित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी। अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित करने संबंधी पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को आदेश देने के बाद यह बयान आया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उसके परिवार से मुलाकात कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले 20 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये घोषणा दोनों देशों के बीच अंतिम समय में हुए समझौते के बाद आई। ये समझौता टैरिफ लागू होने से 2 घंटे से भी कम समय में हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के मामलों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार तक 5,021 मामले दर्ज किए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हुई। नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका को 165 रनों से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by Center and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. Colombia earthquake death toll rises over 300. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over host Sri Lanka in Gal Test. Manav Sathar claims maiden 10-wicket haul. U.S. Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve the security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at his residence in Srinagar.
3: This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की शाम जरा अलग है। आज हम बात करेंगे उस एहसास की जिसे दुनिया ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसे प्यार कहा, किसी ने इश्क, किसी ने मोहब्बत और किसी ने कहा तुम हो तो बस सब कुछ और खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है मोहब्बत के नाम, इश्क के नाम और प्यार के नाम। उन लोगों के नाम जिनके साथ हम हैं, उनके नाम जिनसे हम दूर हैं, और उनके नाम जो कभी हमारी जिंदगी में थे

लेकिन अब सिर्फ यादों में हैं, और उन लोगों के नाम भी जिन्हें हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन कभी उनसे ये कह नहीं पाते कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। तो आज की शाम दिल को थोड़ा सा आराम दीजिए, कुछ पुरानी यादों की खिड़की खोलिए और मेरे साथ चलिए मोहब्बत की उस सड़क पर जहां पर हर मोड़ पर एक कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो मोहब्बत के उस एहसास को खूबसूरती से हमारे सामने रखता है।

दोस्तों कहते हैं कि पहली मोहब्बत भूलना मुश्किल होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पहली मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती। पहली मोहब्बत में हम पहली बार अपने अंदर के उस हिस्से से मिलते हैं जो किसी के लिए धड़कना सीखता है। पहली बार किसी के आने का इंतजार होता है। पहली बार फोन की घंटी जरा खास लगती है और पहली बार कोई नाम सुनकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और पहली बार किसी के बाय कहने के बाद भी दिल कहता है या दिल चाहता है कि बातचीत थोड़ी और चलती रहे।

0: दोस्तों हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही एक चेहरा याद आता है, एक जगह याद आती है, एक शाम याद आती है, एक सड़क, एक बारिश और एक चाय की दुकान, या फिर किसी का वो कहना कि अपना ख्याल रखना। दोस्तों, यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन एक धुन जब हमारे कानों में पड़ती है और हम फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। शायद संगीत और मोहब्बत का रिश्ता इसीलिए इतना गहरा है। एक गीत हमारी पूरी कहानी कह देता है। आज का अगला गीत उन सभी श्रोताओं के लिए जिनके पास भी यदि कोई ऐसी याद है जिन्हें वो भूलना तो चाहते हैं लेकिन उनका दिल उसे संभाल कर संजो कर रखता है।

0: दोस्तों आज आपको कहानी सुनाता हूं इंतजार की। इंतजार सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, इंतजार है किसी के संदेश का, किसी के फोन कॉल का और किसी के मैं पहुंच गया हूं या मैं पहुंच गई हूं कहने का, किसी स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन की तरफ देखने का, किसी दरवाजे की घंटी सुनकर अचानक उठ जाने का और कभी कभी एक आवाज सुनने का। मोहब्बत में इंतजार जितना लंबा होता है, मिलने की खुशी शायद उतनी ही गहरी होती जाती है। और अगर आज आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो ज्यादा इंतजार मत कराइएगा। ये लीजिए वो गीत आपके तरफ यूं आ गया।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

अच्छा दोस्तों, क्या प्यार से पहले दोस्ती जरूरी है? शायद हाँ, क्योंकि दोस्ती में हम सामने वाले को बिना किसी दिखावे के देखते हैं, उसकी हंसी भी, उसका गुस्सा भी, उसकी कमियां भी और उसकी कमजोरियां भी, और फिर भी हम कहते हैं ठीक है, तुम जैसे भी हो वैसे ही अच्छे हो, ठीक इस गीत की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे।

0: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. U.S. Ambassador to India Sergio Gaur today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament. The 21-year-old shuttler is the only Indian remaining in the men's singles draw. India's Unnati Hooda today described her match against Canada's Michelle Lee as a good contest and praised her opponent for playing really well. Talking to media, the Indian prodigy said she was happy with the way she played but felt unfortunate that she could not convert her performance into a win. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his two-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karin Brutyon, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation, and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over host Sri Lanka in the first test in Galle today to take a 1-0 lead in the two-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: So benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 300 points, Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kanta Pandey. In global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल।
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आधा

0: प्रतिशत नीचे आ गया। लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई।
1: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced, and 231 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ। उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपकी ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर जो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास, और जब ऐसी खबरें आती हैं जहां पे जैसे वो एमओयू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसका उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहां पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, जबरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीजें कई बार रीइंफोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स है उस पर आप देख सकते हैं या असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज है, लार्जर जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल कंपनीज के

0: बैलेंस शीट्स और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो रेजिलियंस शोर कर रहे हैं, मतलब इस चैलेंजिंग एनवायरमेंट में वो अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर एक जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट चाहिए वो उनको उस हद तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपके कच्चे तेल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इतना ऐसी एक मूलभूत चीज है, वहां पे आपने असर किया तो पूरे आपकी इकोनॉमी में उसके बाद वो क्योंकि स्टॉक मार्केट को लीड इंडिकेटर बताया जाता है, वो आगे का एक इंडिकेशन देते हैं कि आगे चल के क्या होगा, तो वो चीज आप देख रहे हैं कि आगे चल के स्टॉक मार्केट्स को लगता है कि इम्पैक्ट होगा। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता, कई बार सेंटिमेंट से इम्पैक्ट होता है, पर कई महीने हो गए हैं और आप इसमें आप मार्केट सेंटिमेंट को आप निगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतना फंडामेंटल मूलभूत चीज है।
1: निफ्टी एट 24,000 उद्यन, इट्स बीन अ स्टिकी नोट काइंड ऑफ थिंग। इफ वी लुक बैक इवन टू इयर्स बैक इट वाज हॉवरिंग समवेयर अराउंड 24,000 इटसेल्फ। अगेन वी आर वेल इनटू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 26-27 fiscal now, and yet hovering around 24,000. Of course, we have the factors which is kind of driving it or not driving it. Having said that, Udin, we saw the first quarter results has been being quite promising. If we look at the results in face of the turmoil or the uncertainties we have witnessed over the past 6 months, especially with the Middle East crisis, as you say now. Can we say that the Middle East crisis has kind of outweighed the good results or the more than satisfactory results we saw in the Q1 FY 26-27?
0: Yeah, I mean, it's not bad at all. I mean, if you see the numbers. But, you know, Nishit, the challenge is what the market is concerned about is how things are going to pan out in the future. So what typically if you're investing in something today, you're spending some money, rather let's use the word investing money in buying equities or directly stock, you're buying some stocks or you're buying units of a mutual fund or whatever market linked product, you're buying some units, it could be anything. I mean, it could be buying units in an NPS, National Pension System. Now, what basically an investor, I mean, market sentiment is that if you are investing, do most of the people think, when do they think the investment will bear a return? And can they see that return happening? Now, if it's basically, if you look at it in a very simplified supply and demand, then, you know, when you think that you will, there are two fundamental things. One is, what is the risk of that value going down or staying where it is, whatever. That's one, which is happening to the principal. And will that money grow or not? These are just the two questions. So, if I were to be addressing the listeners of this program, whenever we are analyzing all this, there's so many commentaries that happen. You just need to look at these two things. Now, if the markets are hovering at a particular place and they're not going up, then these two things are at work. So you'll be able to explain almost 70-80% of what's going on by just focusing on these two things. So what's happening is, it's not happening to the satisfaction of most of the participants of the markets, most of the holders of the shares. It could be institutional people might be moving it, which typically tends to be the case. Domestic and foreign players, they tend to move the markets, but there are also Indian investors who are investing through our domestic mutual funds and other institutions. So those things, their sentiments are also important. So the other way of looking at it, a more positive spin, if I'm allowed to give, is that Indian investors continue to be okay with how things are with India. Otherwise, it would have really declined in a very, very big way. And mind you, the things that are making markets move up are all these AI-based companies who are producing the AI IP or the chip. Now, we don't really, really have those kind of players in our country. So we will have a player who will be doing data centers and stuff like that, but not the frontline things which are moving markets elsewhere, say in South Korea or Japan or US. So the fact fact, it is actually the other way of looking at it is that it is reflecting resilience. Now, that doesn't help. It's a high risk investment. And these are what the vagaries are. So therefore, another lesson is that you obviously people talk about asset allocation, that you need to be in equities, gold and debt. That mix has... You're getting back to the textbook. Mm-hmm. And how do you do it in for a retail investor? For people like you and me, you can look at multi-asset allocation funds. Mm-hmm. And if you look at how they've been doing it every time period, 6 months, one year, 3 years, 2 years, you'll find them doing much better than even index funds.
1: All right.
0: So those things are coming back and they are actually showing. And typically, and during these periods, you get to know also which fund manager, which fund house, which scheme does well. So it's not about how you do well when the markets are doing well. Mm. It's also when the market downturn happens, men and the boys get separated.
1: All right. Very interesting point you make, Udayan, of the domestic investors. But let's talk of the foreign portfolio investors and the foreign institutional investors. After a long, long time, let's say after almost 6 months or even 8 months now, there have been a positive inflow from the FPIs and FIIs. And that is quite positive, of course, not manifesting into what we are seeing in the Indian markets. But as well, if we see the primary market as well, not getting quite buoyed up, rather being very tepid, hearsay.
0: It's not such a bad thing, Nishit, you know, because there have been these complaints that, you know, you bring an IPO and it's exorbitantly priced. You know, you need to keep something in the on the table for the smaller investors or the other investors, that these episodes are of founders and other large investors who had invested in initially of making money. That's a fair game. But in these kind of circumstances, maybe one good thing is IPOs is happening. If things are bad, IPOs wouldn't have happened. So again, I'm coming back to the resilience. If market people were not feeling excited about it, they wouldn't have come with the IPO. They would have postponed it. So those periods we have also seen. So that one thing is that it's looking okay. These people are coming in. But the pricing, I would argue, is likely to be much better. You won't find analysts complaining that it's unfairly priced or whatever, and those things are going to happen, and you'll also have a pipeline of these things, these kind of companies coming in.
2: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने कहा है कि हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सीएएस में किसी भी तरह की हेराफेरी और इसे बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीडब्ल्यूएपी व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सीबी के लिए अधिक आसान है. उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों, खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी. इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता. श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक सीएएस में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं. तो कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहां इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है. चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें, और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें, ये उन लाइन में है। जो इसे टीथिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीथिंग प्रॉब्लम सब पार्टिसिपेशन का इशू है। जब जैसे वैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ती पड़ेगी, आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पे नजर दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज्यादा हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा, ये ज्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है वनस्पति इसके की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है, तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा, तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक है वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीजों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
2: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है, जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहां पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
0: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीजें हैं वो हम एक हर जगह में हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है।
2: आगे बढ़ते हैं, सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए LPG सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, वहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफी हलचल मची हुई है। कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे SK Hynix उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ETF को स्ट्रक्चर किया, तो वो वहाँ का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं। और ये जब AI रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब उस वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी। अब जब जैसे ही वहाँ पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया, पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है और वहाँ पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज़्यादा शेल्वी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो AI रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पे असर ज़्यादा देख रहे हैं।
1: राइट। And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media post, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement

0: came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
1: उद्यन हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोई था नजर नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
2: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है, और हमारे लिए हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं, तो उनको वहाँ से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह, अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीजों में असर पड़ जाता है. दूसरा है जो तेल वहां से आ रहा है उसमें का भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये जरूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो जरूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
1: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के

0: श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia Karen Brutyon and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia Edward Arsyan. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between

समय हुआ है 12:11 और 6 सेकेंड। ये समय है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा का निशिगंधा, और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा एक तरह लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत नगमे और खूबसूरत बातें, और उम्मीद करती हूँ कि ये सफर हमारा बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और शुरुआत इन अल्फाज के साथ, छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, तुम शब्द मैं अर्थ और तुम बिन मैं व्यर्थ।

तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बाहर जैसा है। तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बाहर जैसा है, और तेरा संग मिलना यकीन मानो मेरे लिए उपहार जैसा है।

बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, धड़कन बनकर दिल में समाते हो तुम। फासले भले ही हों जितने हमारे दरमियां, फासले जितने भी हों हमारे दरमियां, पर हर पल महसूस होता है कि यहीं कहीं आसपास हो तुम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा।

आंखों में शिकायत और होठों पर खामोशी रखते हो? सच बताओ, यूं नाराज से क्यों लगते हो? हंस के बात कर लो कि दिल को सुकून आ जाए। तुम तो मेरी हर अधूरी दुआ की बंदगी लगते हो।

छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर, छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर। ये जुल्फें तो बस एक बहाना है दीवाने को दीवाना करने के लिए।

हुस्न को चिलमन की ओर से छिपाने वाले, जरा सुन मेरी इन आंखों की दीवानगी, तुझे इन पर्दों के पार भी कर देती।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाइएगा मत। समाचारों के उस पार मिलूंगी आपको कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल

0: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ।

अधूरी है आसमां की चांदनी तुम्हारे बिना, और अधूरा है मेरा हर एक ख्वाब तुम्हारे बिना। जरा पास बैठो और निगाहें मिलाओ उस चांद से, कि उसे भी तो पता चले कौन है बेमिसाल तुम्हारे बिना।

जी चाहता है तुझे अपनी इन आंखों में छुपा लूं और पलकों को बंद करके इस जमाने से चुरा लूं, न देख सके कोई तुझे मेरे सिवा। इसका

तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। बहक गए कदम वहीं पर जहां हम तेरी नजर के असर में थे। जमाने की सारी राहें भूल गए हम पल भर में ही, जब सकैद हुए हैं तुम्हारे इन आंखों के शहर में।

कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे, कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे। हवाओं में घुली मोहब्बत थी और हाथों में हमारे हाथ थे। अब तो जब भी बरसती है ये बारिश की, अब तो जब भी बरसती है ये सावन की बूंदें, दिल तड़प उठता है याद करके कि कभी हम भी एक दूसरे के पास थे।

खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। इस खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। लगता है इसे भी हमारी तरह किसी की याद ने सताया है आज।

दिल की कहानी कहां से शुरू और कहां खत्म हुई पता ही नहीं चला, जब मेरी हर सांस तेरी दीवानी हुई। शुरुआत तो हुई थी महज एक अजनबी मुलाकात से, और अब ये हर धड़कन पुरानी कहानी हुई।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं

0: हैं खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। ये संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। नीदरलैंड्स के आम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा।

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू।

0: कब प्यार हो जाए क्या पता, ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। अजनबी रास्ता पर चलते चलते ये किसी को भी अपना चुनता है। न पूछो इस दिल की मासूमियत का आलम तुम, ये बिना इजाजत ही किसी के हसीन ख्वाब बुनता है।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

क्या जीना तेरे बिना, जब मेरी हर सांस में तू समाया है। इस खाली दिल को सिर्फ तेरी ही चाहत ने तो महकाया है। लोग मांगते होंगे लंबी उम्र की दुआएं, मैंने तो हर दुआ में सिर्फ तेरा संग ही पाया है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है रात सुरमई और अंजू है आपके साथ। जानते हैं बहुत नाजुक होता है ये दिल, जरा सी बेरुखी से चटक जाता है और जमाना जिसे एक मामूली टुकड़ा समझकर पैरों से कुचल जाता है। तुम तो कह गए कि खुश रहना हमारे बिना भी, पर इस टूटे हुए दिल को कौन समझाए जो बस तुम पर ही ठहर जाता है।

हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हमारी आंखों के सामने हमारे ही ख्वाबों को जलाने चले गए। एक लफ्ज भी ना निकला हमारे कांपते होठों से उस वक्त जब वो मुस्कुराकर किसी और को अपना बनाने चले गए।

इत्तेफाक हूँ या खुदा की मर्जी, इत्तेफाक हूँ या खुदा की मर्जी, आज फिर से मिले हो इस मोड़ पर जहाँ कभी रास्ता खत्म हुआ था।

दिल की बस एक ही आरजू है इस ढलती हुई शाम में, दिल की बस एक ही आरजू है इस ढलती हुई शाम में, आज जी भर के चाहे और तुझे खो जाए तेरे नाम।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद रहेंगी आपके साथ भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ

0: द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्सटलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. Union Home Minister Amit Shah will chair the Southern Zonal

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराई का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की। रात की खामोशी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिना आहट दिल तक पहुंच जाते हैं। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही है, ना कोई दस्तक ना कोई शोर, बस धीरे से आती है और दिल में अपना घर बना लेती है।

कभी कभी दिल को किसी वजह की तलाश नहीं होती, बस किसी अपने की याद ही काफी होती है। मन भी कितना मासूम है, दूर बैठे किसी खास इंसान को याद करके भी उसके करीब होने का एहसास पा लेता है।

जब दिल में मोहब्बत हो तो वही दुनिया कुछ ज्यादा खूबसूरत लगती है। फूल वही होते हैं, चांद वही होता है, रात भी वही होती है, बस किसी अपने की मौजूदगी का एहसास हर चीज को खास बना देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हमराही। हर दिल में कोई ना कोई खूबसूरत सपना ज़रूर होता है, किसी के साथ हंसने का, किसी के साथ ज़िंदगी के छोटे छोटे पल बांटने का। कुछ सपने आंखें बंद करने पर नहीं, बल्कि किसी खास इंसान को याद करने पर दिखाई देते हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। रात की तन्हाई में जब दुनिया सो जाती है तब दिल की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देती है। कुछ चेहरे आंखों के सामने नहीं होते, फिर भी उनकी याद दिल के सबसे करीब होती है।

मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग शायद वही है जिसमें कोई दवा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक सच्चा एहसास होता है। किसी की मुस्कान याद आ जाए और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए, इससे खूबसूरत इश्क और क्या होगा।

रात के इस पहर में जब शहर की रफ्तार थम सी गई है, तब दिल की दुनिया जाग रही है, कोई याद बनकर, कोई ख्वाब बनकर और कोई मोहब्बत बनकर। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं ले रही हूँ अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनल

लिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस मार्ली बैकुंग इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मिजो महिला थी। हेलियन डांगलियानी फिलहाल आइजोल जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के आम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की गीत गंगा फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। संगीतकार स्वपन जगमोहन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म साजन बिना सुहागन से मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कोहरा से हेमंत कुमार की आवाज में, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार हेमंत कुमार।

अभी आपने गीत सुना खट्टा मीठा से किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार गुलजार, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजनबी से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शेषनाग से मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बेटा से अनुराधा पोडवाल की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मैं 16 बरस की से उदित नारायण की आवाज में, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, जाने पहले छोड़कर जा रही हूँ आपको एक प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म आखिर क्यों का, मोहम्मद अजीज की आवाज में। और जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारदीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवम्बर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं को की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षा रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अनुराधा पोडवाल के इस भजन के साथ।

किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी कोई सेवा नहीं। जैसे सूरज बिना भेदभाव सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमारी छोटी सी खुशी और अपनापन किसी की पूरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं।

0: जीवन भी संगीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे होते हैं कभी धीमे। जरूरी ये है कि हम हर सुर को स्वीकार करके अपनी जिंदगी की मधुर धुन बनाते रहें।
1: हंसो मत, बोलो